0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला आज भारत मंडपम में दूसरे भारत ईएफटीए समृद्धि शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। 10 खरब डॉलर की निवेश साझेदारी और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करना विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में TEPA की प्रगति की समीक्षा, नए निवेश की घोषणाएं, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग मजबूत करने तथा प्रमुख क्षेत्रों में अवसर तलाशने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति गी पाहमला 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत और ईएफटीए के बीच टीईपीए पिछले वर्ष 1 अक्टूबर से लागू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से बीजेपी के वरिष्ठ नेता वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवातीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन GSMA के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। भारत मोबाइल कांग्रेस आज से 10 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी सरकार के प्रमुख के रूप में आज 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम मिलती है।
1: ये जो निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे विपक्ष की ओर से मार्च का कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई। पुलिस ने कानून के तहत करीब 260 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 10 सांसद भी शामिल हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अपने समर्थकों के साथ बिना अनुमति आकाशवाणी भवन परिसर में पहुंचे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेताओं और अन्य प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया और हिरासत में लिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित पैसे के लेन देन और भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। नई सूची में कुल 375 तरह के काम शामिल हैं। इन्हें 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना, पानी की सुरक्षा बढ़ाना और आजीविका के अवसर मजबूत करना है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए। शानदार शतक के लिए श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का अगला मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान

किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में भी तेज हवाएं चलने की संभावना है और आंशिक तौर पर बादल छा सकते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसे ही मौसम की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत 375 अनुमत कार्यों को अधिसूचित किया। पहले के 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। कहा, प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। रिजर्व बैंक

0: सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। कहा, प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया और भारत ने पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी ने आज ही के दिन 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का 25 वर्ष का कार्यकाल भारतीय लोकतंत्र की ताकत का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा जनसेवा, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र को सर्वोपरि रखने की भावना के साथ काम किया है। उन्होंने मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के 10 प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख किया। पहला बिंदु गुजरात से पूरे देश तक विकास के दृष्टिकोण का विस्तार है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने गुजरात में अपने कार्यक्रमों और नीतियों के माध्यम से कई बदलाव किए, जिसके लिए उन्हें दुनिया भर में सम्मान मिला।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में बात करेंगे कि इस दृष्टिकोण को गोवा के सागरमाला कार्यक्रम ने किस तरह साकार किया है।
2: देश की 11,000 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा और करीब 14,500 किलोमीटर संभावित नौगम्य जल मार्गों का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए सरकार ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सागरमाला कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देना है। इसके तहत बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, बेहतर समुद्री संपर्क, तटीय नौवहन को बढ़ावा देने और तटीय समुदायों को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की समुद्री क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर आर्थिक विकास को गति देने पर जोर दिया है।
3: भारत सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है, पोर्ट कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया है।
2: समुद्र और जल मार्ग गोवा की पहचान का अभिन्न हिस्सा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सागरमाला कार्यक्रम के तहत राज्य में बंदरगाहों और जल मार्गों के विकास के साथ साथ क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। गोवा के कैप्टन ऑफ पोर्ट्स ऑक्टोवियो रोड्रिग्स ने आकाशवाणी को बताया कि सागरमाला के तहत राज्य में किस प्रकार की पहलें की जा रही हैं।
4: इट इज गोइंग टू चेंज मेनी जेटीज। नाउ सी अनदर 10 जेटीज वी आर गोइंग टू गेट ऑलरेडी अप्रूव्ड और ओनली थिंग नाउ वी हैव नीड टू इंस्टॉल इट। दे आर ऑल फ्लोटिंग जेटीज व्हिच विल टेक केयर ऑफ द टूरिज्म एक्टिविटीज ओवर देयर, पैसेंजर्स, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बिकॉज़ वी आर गोइंग टू आल्सो कम अप विद द ऑटो मेट्रो।
2: गोवा में अब तक सागरमाला के तहत 10 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं जिन पर करीब 841 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। वहीं करीब 98 करोड़ रुपए की 2 अन्य परियोजनाएं फिलहाल कार्यान्वयन के चरण में हैं। इन परियोजनाओं से गोवा के बंदरगाहों और जल मार्गों का आधुनिकीकरण हो रहा है और उनकी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल संभव हो रहा है। साथ ही क्रूज पर्यटन और तटीय अर्थव्यवस्था के विस्तार की नई संभावनाएं भी खुल रही हैं। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के अंतर्गत अनुमत कार्यों की सूची अधिसूचित कर दी है। नए ग्रामीण कार्य ढांचे के अंतर्गत कुल 375 कार्यों को अनुमत किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि नई सूची में पहले के ढांचे के तहत शामिल 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट।
5: इन कार्यों को चार विषयगत स्तंभों जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचा तथा अत्यधिक मौसम की घटनाओं और आपदा तैयारी के लिए विशेष कार्य के तहत पुनर्गठित किया गया है। नया ढांचा सिर्फ परिसंपत्ति

0: व्यक्तियों के पारंपरिक प्रकारों की सूची तक सीमित रहने के बजाय मजदूरी रोजगार को टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण और विकास परिणामों के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। प्रत्येक कार्य की शुरुआत विकसित ग्राम पंचायत योजना के तहत जमीनी स्तर पर होने वाली विकेंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से होगी, जिसे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और इसे विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत में ये विचार प्रकट किए।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण आवश्यक है। उन्होंने प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को किफायती और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने अल्पविकसित और विकासशील देशों और बढ़ते डिजिटल विभाजन को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी को अंतिम छोर तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। डिजिटल और साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौतियों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समस्या के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों की आवश्यकता है। जीएसएमए बोर्ड के सदस्यों ने डिजिटल और मोबाइल कनेक्टिविटी में वैश्विक नेता के रूप में भारत के उदय पर चर्चा की। बैठक में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, संचार राज्य मंत्री डॉक्टर पिम्मा सानी चंद्रशेखर, जीएसएमए बोर्ड के सदस्य और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 10वां संस्करण आज नई दिल्ली के यशोभूमि में शुरू होगा। इस वर्ष इसका विषय है सीमा रहित विस्तार। सम्मेलन में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को दर्शाया जाएगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 1.5 लाख से अधिक लोग, 500 से अधिक प्रदर्शक और साझेदार, 600 से अधिक स्टार्टअप और 900 से ज्यादा विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसका उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव को देखते हुए लगभग 3.5 साल बाद ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में आरबीआई की नीतिगत रेपो दर 5.25% है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के हिमाचल प्रदेश दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज अटल टनल रोहतांग का दौरा करेंगी।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज अटल टनल रोहतांग का दौरा करने का कार्यक्रम है। वे सुरंग के उत्तर और दक्षिण दोनों पोर्टल पर जाएंगी और इस ऐतिहासिक टनल के बारे में सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों से जानकारी हासिल करेंगी। दोपहर बाद राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर मनाली, अटल टनल रोहतांग और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, मनाली।
2: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र में पोरवोरिम में गोवा विधानसभा परिसर के रजत जयंती समारोह में ये बात कही। एक रिपोर्ट।
4: गोवा ने अपनी विरासत और प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए देश की आर्थिक प्रगति के साथ कदम मिलाया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सहमति और असहमति दोनों लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है। आजादी के बाद से भारत का लोकतंत्र इसलिए मजबूत है क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थाओं ने विभिन्न विचारों, मतों और दृष्टिकोणों को साथ लाने का काम। भारत के लोग हमेशा एकजुट होकर खड़े रहे हैं। उन्होंने युवाओं से लोकतांत्रिक संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी की अपील की। महेश सोबड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
2: विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को

0: कर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक कल विरोध मार्च निकाला। हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर जाते समय सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक दिया। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य दलों के विपक्षी सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रही है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों ने सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। बाद में शाम को एसआईआर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आकाशवाणी भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे विपक्ष की ओर से मार्च का कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई थी। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में आज बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 क्रिकेट मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। कल रात लखनऊ में खेले गए मैच में भारत की ओर से नमन धीर ने 3 और अक्षर पटेल तथा कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच शुक्रवार को रांची में खेला जाएगा। नोवाक जोकोविच ने पेचिंग में एलेक्स डी मिनोर के चोट के कारण फाइनल से हटने के बाद 7वीं बार चाइना ओपन का खिताब जीत लिया है। ये जोकोविच के करियर का 102वां टूर स्तर का खिताब है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
1: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में जनसेवा के 25 साल पूरे होने को अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर दिया है। उपलब्धि शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, मोदी का अनूठा रिकॉर्ड, लगातार सत्ता में 25 साल पूरे, कोई चुनाव नहीं हारे। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने दैनिक जागरण में लिखा है, असाधारण जनसेवक है प्रधानमंत्री मोदी। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अमर उजाला में लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलाव को संभव बनाया है, उन्होंने अपने कामों से ये दिखाया कि सार्वजनिक जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे हल न किया जा सके। छोटे उद्योगों के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाना, हिंदुस्तान की सुर्खी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए के SME विकास कोष को दी मंजूरी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कैंप ऑफिस समेत 8 स्थानों पर CBI के छापे को दैनिक ट्रिब्यून ने सुर्खी बनाया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश और प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री के OSD सहित 6 के खिलाफ FIR दर्ज। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित होंगे अब नए वायुसेना प्रमुख। लोकसत्य में एयर मार्शल मौजूदा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे को प्रमुखता दी गई है। विश्व बैंक ने भारत का वृद्धि अनुमान बढ़ाया, दैनिक जागरण की सुर्खी है, चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.1% किया।
0: धन्यवाद देवेंद्र। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने विकसित भारत जी रामजी योजना के अंतर्गत 375 अनुमत कार्यों को अधिसूचित किया, पहले के 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की, कहा प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। और मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi completes 25 years as head of a government. Union Cabinet passes resolution to commemorate this landmark achievement. Government notifies 375 permissible works under Viksit Bharat G. Ramji scheme, marking 41% expansion from previous 266 works. Prime Minister Modi interacts with board members.

ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक और आपने ट्यून किया है विविध भारती। आइए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम सनक, आवाज श्रेया घोषाल की, रश्मि विराग की रचना है और जीत गांगुली का संगीत।

0: साथियों, क्या आपको पता है कपास का एक छोटा सा पौधा हमारे जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है? शायद हम अक्सर इस पर ध्यान नहीं देते। खेतों में उगने वाला यही सफेद रेशा हमारे कपड़ों से लेकर कई जरूरी उत्पादों तक पहुंचता है और किसानों तथा लाखों लोगों की आजीविका का आधार बनता है। अब आप सोच रहे होंगे, आज अचानक इस कपास की बात क्यों? तो ऐसा है कि 7 अक्टूबर को कपास यानी कि विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस इसी सफेद रेशे से जुड़े पूरे संसार को समझने का अवसर देता है, साथ ही ये कपास की खेती को अधिक टिकाऊ बनाने और किसानों के हितों पर ध्यान देने की भी जरूरत को याद दिलाता है। आइए सुनते हैं अगला गीत, पर उससे पहले ये संदेश।
1: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं?
2: हाँ जी।
1: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं?
2: हाँ जी हाँ।
1: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
1: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है।
2: ना, बोलो, बोलो।
1: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध

0: भारती राष्ट्रीय सेवा
1: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
2: तो इंस्टाग्राम पर विविध भारती के पेज को फॉलो किया या नहीं? अगर नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। और आपको सुनवाते हैं सूर्यवंशी फिल्म का ये गीत, अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाजों में, रचना रश्मि विराग की और धुन बनाई है कौशिक गुड्डू।

आपने ट्यून किया है विविध भारती, कार्यक्रम है चित्रलोक। साथियों, कुछ बातें कहने के लिए कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं और कुछ एहसास सिर्फ संगीत कह देता है। तो ऐसे ही खूबसूरत एहसास के साथ आगे बढ़

तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। इस फिल्म का गीत सुनिए वरुण जैन और राघव चैतन्य की आवाजों में। इंद्रनील ने इसे लिखा है, सचिन जिगर का संगीत।

आइए अब आपको सुनवाते हैं भूल भुलैया 3। इस फिल्म का गीत आदित्य रिखारी तुलसी कुमार की आवाजों में, आदित्य रिखारी ने इसे लिखा है और संगीत है लिजो

0: सकिनो, जेव्हा जेव्हा उर्दू शायरी, ठुमरी आणि गझलचा उल्लेख होतो तेव्हा एका अशा आवाजाची आठवण येते ज्या आवाजात वेदना, प्रेम आणि एक वेगळीच आर्तता भरली होती. होय सखिनो, आज आपण जाणून घेतोय मल्लिका ए गझल म्हणजेच बेगम अख्तर यांच्याबद्दल.
1: सुनने वालों को बेगम अख्तर का सलाम. आज तक मैं आपके सामने सिर्फ एक गायिका के रूप में ही हाजिर हुई हूँ. आपसे बातें करने का मौका तो मुझे पहली बार ही मिला है, इसलिए ये कहे बगैर नहीं रह सकती कि मैं बेहद खुशनसीब हूँ जो ऐसे मुल्क में मैंने जन्म लिया जहाँ की फजाएं संगीत से मुअत्तर हैं, जहाँ के लोग फन और फनकार से मोहब्बत करते हैं. मुझे भी एक फनकार की हैसियत से आपका बहुत प्यार मिला है. आपके प्यार का शुक्रिया हमेशा मैंने अपनी गायकी से अदा किया है.

नमस्कार श्रोताओं, सुरीला सफर इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आपको आज की जो इबारत है, जो टेक्स्ट है, जो हमने विविध भारती के फेसबुक पेज पर पोस्ट किया है, वो आपको पढ़ के सुना देते हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने पढ़ भी लिया है और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी हम तक पहुंचा दी है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए हम एक बार पढ़ के सुना देते हैं। आज आपको कुछ सुनाना है, प्यार की दास्तान भी, दिल का हाल भी, पायलों के गीत भी और कहानियां भी। बाबू आना, तुम भी सुनते जाना, बाराती भी सुनो और बंधु मितवा तुम भी सुनो। सुनाना तो ये है कि ए मेरे दोस्त, तेरी यारी हमें जान से प्यारी है। इन गुलाबी कलियों ने भी हमारा रास्ता रोक कर यही कहा, यार हमारी बात सुनो। पर बात तो यही है कि अब कौन किसकी सुनता है। सुनना किसी को पसंद नहीं। कोई कहता है मैं क्यों किसी की सुनूं, पर सच तो ये है कि सुनना भी एक कौशल है। सुनना इसलिए है ताकि हम बोलने की तैयारी कर सके। जी हाँ, सुनना कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है और इसकी क्या आवश्यकता है, बस यही है हमारा आज का विषय। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज आपकी इस इबारत में जीवन का पूरा रंगमंच सिमटा है, जहाँ प्यार की दास्तान है, दिल का हाल है, पायलों के गीत है और यारी की वो मिठास है जो जान से भी प्यारी लगती है। पर इन सब के बीच सबसे गहरी बात यही है कि

आज सुनना ही सबसे ज्यादा कठिन हो गया है। हर दिल कुछ न कुछ सुनाना चाहता है, पर सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि हमने सुनने को केवल बोलने से पहले का एक ठहराव समझ लिया है। जबकि सच तो ये है कि सुनना एक साधना है, एक कौशल है, एक प्रेम है। जब हम सच में सुनते हैं तो सामने वाले के शब्द ही नहीं, उसके मौन को भी सुन लेते हैं, और तभी यारी, प्यार और कहानियां सार्थक होती है। इसलिए बोलने की तैयारी के लिए नहीं, बल्कि दूसरे के अस्तित्व को सम्मान देने के लिए सुनने की कला को सीखना ही आज के शोर भरे समय की सबसे बड़ी जरूरत है। एक साथी हमारे ये भी लिख रही है कि सुनने की इच्छा हो तो खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है, पर जब कोई सुनना ही नहीं चाहे तो हजार शब्द भी बेअसर हो जाते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका। सबसे पहला जो गीत है वो फरार फिल्म का गाना है, प्यार की दास्तान। ये गीत है लता जी की आवाज, कैफी आजमी के बोल, संगीत किसका है ये आप हमें बताइए।

बेअसर हो जाते हैं। चलिए धन्यवाद आपका। सबसे पहला जो गीत है वो फरार फिल्म का गाना है, प्यार की दास्तान। ये गीत है लता जी की आवाज, कैफी आजमी के बोल, संगीत किसका है ये आप हमें बताइए।

क्या करेगा सुन के जमाना, तुम सुनो तो कहे जहां। जी हाँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी खास व्यक्ति के लिए होती है, किसी खास व्यक्ति को सुनाने के लिए होती है, और जब वो व्यक्ति उन बातों को सुनता है तो दिल को सुकून मिलता है। एक हमारे साथी की ये बात कि फरार फिल्म का ये सदाबहार गीत, लता मंगेशकर की मखमली आवाज़, हेमंत कुमार के शांत संगीत और कैफी आज़मी की बेहतरीन शायरी का एक अनूठा संगम है। ये गाना प्रेम के निजी और पवित्र एहसास को बहुत ही खूबसूरती से बयां करता हुआ गीत है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि किसी की सुनना सम्मान बोधक सूचक है। सुनना ही बोलने वाले को सम्मान देना होता है। सुनना एक कला है जो सहनशीलता और संवेदनशीलता का परिचायक है। खासकर अगर बातें दिलों की हो तो सावधानी सर्वोपरि रखनी चाहिए। बोलने वाले के संवाद चाहे व्यंग्यात्मक हो, कटाक्षपूर्ण हो, अनर्गल हो, असंवैधानिक हो, विरोधाभास हो या चुभने वाली हो, सुनकर ही अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। धन्यवाद आपका। चलिए हम अगला गाना अब आपको सुनवाते हैं। श्री 420 फिल्म का ये गाना है, मन्ना डे की आवाज, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, संगीत है शंकर जयकिशन का।

सुनना मगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना, बिन मौसम मलहार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना, वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला।

अब एक सीधी सी बात हमारे मन में ये है कि अधिक सुनने के क्या-क्या फायदे हैं और अधिक बोलने के क्या-क्या नुकसान है। ये हमारा सवाल भी है आपसे, अधिक सुनने के क्या-क्या फायदे हैं और अधिक बोलने से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं, ये आप हमें बता दीजिए।

एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सुनना ही आगे जाने का मार्ग है, आगे जाके सुना हुआ ही हम बोल सकते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि बोलना अपनी बात कहना है, लेकिन सुनना किसी के दिल को जगह देना है। रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जहां बोलने से पहले कोई सुनने वाला और चुप्पी में भी समझने वाला हो। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि सुनना सिर्फ शब्दों को सुन लेना नहीं है, बल्कि किसी के दिल तक पहुँच जाना है। कभी कभी इंसान की सलाह नहीं, बस एक ऐसा कंधा चाहिए होता है जहाँ उसकी बातें बिना किसी शिकायत के सुनी जाए। सच तो यह है कि जब कोई हमें दिल से सुनता है तो आधा दर्द वहीं खामोशी में पिघल जाता है, कुछ जख्म दवा से नहीं सुन लिए जाने से भर जाते हैं। और एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि आज कहने सुनने की बात है तो कुछ लोग कहते रहते हैं, जरूरी हो या ना हो उन्हें सुनने की आदत नहीं है। कहने से ज्यादा सुनना बहुत जरूरी है ताकि कुछ उपयोगी या ज्ञान की बातें मिले। दूसरों से बात करते समय सोच समझ कर बोले, ऐसी कोई बात ना बोले जिससे दूसरों को बुरा लगे, मुझे सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए धन्यवाद, अगला गाना अब आपको सुनवाते हैं। ये गाना लता जी की आवाज में है, शंकर जयकिशन का संगीत है। किस फिल्म का गाना है ये आप हमें बताइए।

ये जो गीत अभी आपने सुना, ये ससुराल फिल्म का गाना है। बहुत कम श्रोताओं ने इस बात का जवाब हमें दिया है, लेकिन जिन्होंने दिया है सही लिखा है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सिर्फ अपनी ही बात लगातार बोलना और किसी दूसरे को नहीं सुनना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे को सुनना भी और समझना एक बेहतरीन संवाद की नींव होती है। बोलना और सुनना संवाद के दो अहम पहलू है, क्योंकि सिर्फ

अपने ही लगातार बोलने से बातचीत अधूरी रह जाती है और एक अच्छा श्रोता बनने से बातचीत अधिक प्रभावशाली और संतुलित होती है। इसलिए अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सिर्फ बोलना ही नहीं सुनना भी सीखना चाहिए। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि दिल अपनी दास्तान सुनाने को बेताब रहता है पर दिमाग हमेशा ये सोचता है कि क्या जो सोच कर हम बयान करेंगे उसे उसी तरह सामने वाला समझ सकता है, कहीं वो कुछ और समझ लिया तो हमारे मन की बातें कहने का अर्थ नहीं रह जाता है। यही दुविधा हमेशा ही दिल और दिमाग के बीच चलती रहती है। कहते हैं कि कह देने से मन का बोझ कम हो जाता है पर कभी कभी खामोशी भी मन की पीड़ा को कम कर देती है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। राजपूत फिल्म का गाना अब आपके लिए लेकर आए हैं, मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। ये तीन कलाकारों पर फिल्माया गया गाना है, कौन से कलाकार हैं ये आप बताइए। और हाँ, हमारा जो सवाल था कि अधिक सुनने के क्या फायदे हैं और अधिक बोलने के क्या नुकसान हो सकते हैं, इस पर भी हमारी चर्चा जारी रहेगी।

कुछ इसी तरह की कहानियां हमने भी अपनी दादी नानी और अपने पुरखों से सुनी, और उन कहानियों को सुनने में बड़ा आनंद आता था, और आनंद के साथ साथ हमें कई बातों की सीख भी तो मिलती थी ना, इसीलिए तो वो कहानियां बनाई और सुनाई जाती थी। एक साथी ने बहुत सुंदर बात लिखी है, उनकी ये बातें हमारे दिल को छू गई। लिखा है कि सुनना यानी श्रवण केवल एक शारीरिक क्रिया मात्र नहीं है, बल्कि ज्ञानार्जन और आत्मिक विकास की पहली सीढ़ी है। हमारे देश में अनादिकाल से श्रुति परंपरा रही है। गुरु द्वारा कहे जाने वाले वेदों और उपनिषदों के मंत्रों और ऋचाओं को सुनकर अपने उनके गूढ़ अर्थ समझकर चेतना में आत्मसात किया जाता था, और एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ उस मंत्र में छुपे गूढ़ अर्थ और भावना से तादात्म्य स्थापित होता था। गुरु के द्वारा कहे जाने वाले मंत्रों के भाषा प्रवाह, आरोह अवरोह और अभिव्यक्ति के सूक्ष्म भेदों को बहुत गहराई से आत्मसात किया जाता था, जिससे सुनने वाले को वाक सिद्धि यानी प्रभावशाली रूप से अपनी बात कहने की कला में निखार आ जाता है। बहुत सुंदर बात आपकी। एक साथी लिख रहे हैं कि बोलना और सुनना ही व्यक्तित्व का परिचायक है। संक्षिप्तता में पूर्णता प्रकाशित करती वाणी कहनी चाहिए, भाषा में शालीनता परिपक्वता परमावश्यक है। एक साथी लिख रहे हैं कि अधिक बोलने से शब्दों का महत्व कम हो जाता है और अनजाने में दूरी बढ़ जाती है, पर ज्यादा सुनने से हम बेहतर श्रोता बनते हैं और दूसरे को समझने के साथ उसके मन की बात भी जान पाते हैं, इसलिए अधिक सुनना समझदार होने की निशानी है। और एक साथी ने तो ये बात लिखी है कि मैंने तो एक कप चाय बना ली है और सुरीला सफर प्रोग्राम सुन रही हूँ। धन्यवाद आपका। चलिए अब बाबू आना सुनते जाना, ये गाना संगीत किसका है आप बताइए।

0: महंगा सौदा है इसका लुटना जाना,
1: ये सब है जाल इसका, मालूम है हाल इसका,
0: चोरी का है माल इसका, धोखा न खाना।
2: मौजी बोलो मौजी, मौजी बोलो मौजी, मौजी बोलो
0: बापू आना, सुनते जाना।

0: ले लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी, ले लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी।
1: अरे
0: तू जा जा, जामू धो गया।
1: अरे
0: तू जा जा, अरे जा जा, जा।

एक साथी ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि सच कहें तो रेडियो से हमें सुनने का संस्कार मिलता है। हम 24 घंटे लगातार बोल नहीं सकते, मगर सुन जरूर सकते हैं। शायद इसलिए कुदरत ने हमें दो कान और एक जिह्वा प्रदान की है। सुनना भी वास्तव में एक कला ही है। प्रकृति के नजदीक खामोशी से सुनिए तो सही, न जाने कितनी मधुर दिव्य आवाजें आपको अथाह असीम शांति और सुकून देती हुई महसूस होंगी। किसी फूल पर मंडराते हुए मधुकर के गुंजन, मंद मंद समीर में घुलती हुई रागिनी, बहते दरिया की लहरों की अटखेलियां की स्वर लहरियां, किसी गौरी की चूड़ियों के खनक और पांवों में बसती पायल के सरगम, कहने का अभिप्राय यही है कि अच्छा सुनने का कौशल हमें मानसिक अवसाद से राहत दिलाता है। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि कई लोग कहते हैं कि मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ, किसी को बुरा लगे या भला, पर मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। और एक साथी लिख रहे हैं कि इस समय मेरे ऑफिस में रखे रेडियो पर हाथ रखकर मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। मैं बचपन से रेडियो पर विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम सुनता था, आज भी सुनता हूँ और आगे भी अंतिम सांसों तक सुनता रहूंगा। और एक साथी हमारे ये बात लिख रहे हैं कि हमें तो विविध भारती जो भी सुनाती हम चुपचाप सुनते रहते हैं और कहते भी हैं, लिखते भी हैं, क्योंकि विविध भारती हमारी अपनी है। आपके इस प्यार के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए सावन भादो फिल्म का ये गाना सुनवाते हैं। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है बताइए हमें।

एक हमारे साथी ने बहुत सटीक बात लिखी है। लिखते हैं कि अगर देखा जाए तो हमारी सारी मन स्थिति सुनने पर ही निर्भर करती है। दूर बैठे किसी का फोन भी आ जाए और कोई अच्छी खबर देते तो हम खुश हो जाते हैं, परेशानी कम हो जाती है। सुख दुख अच्छा बुरा सब कुछ सुनने पर ही तो निर्भर होता है। सबसे पहले अगर कोई मन स्थिति को बदलने में सक्षम है तो वो हमारी श्रवण शक्ति ही है। वहीं किसी सुंदर भजन या गीत को सुन ले तो मन आनंद से भर जाता है। कितनी सही बात है ना कि सुनकर ही तो हमें मन को, हमारे मन को खुशी मिलती है, और कोई बुरी खबर सुन ले तो मन उदास भी हो जाता है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सुनना, शब्दों को सुनना भर नहीं, उसकी आवाज में छिपी उदासी को सुनना है, उसकी खामोशी में ठहरे अनगिनत सवालों को सुनना है। सामने वाला जब अपनी कहानी कहता है तो वो केवल शब्द नहीं कहता, वह अपने भीतर की परतें खोलता है, अपनी खुशियां, अपनी शिकायतें, अपने अनकहे एहसास हमारे सामने रख देता है। इसलिए खामोशी से किसी को सुनना बेहद जरूरी है। चलिए अगला गीत अब सुनते हैं, रोटी फिल्म का ये गाना किशोर कुमार की आवाज।

एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आजकल के वृद्ध माता पिता जिनके बच्चे बाहर हैं और अकेलेपन से जूझ रहे हैं, घर में कोई बात करने वाला नहीं है, उनकी बातें सुनने वाला नहीं है, तो ऐसे में रिश्तेदार और पड़ोसियों को इतना तो करना चाहिए कि उनके पास बैठकर इत्मीनान से उनकी बातें सुने और उनको भी कोई साथी मिलेगा और उपयोगी बातें सुनने को मिलेगी। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि आज के दौर में प्रत्येक इंसान में जो एक चीज गायब दिखती है वो है सुनना। इंसान नहीं जानता कि सुनना भी एक तीर्थ है। ये विडंबना है कि हर इंसान सिर्फ बोल रहा है, सुनना बिल्कुल अनचाही सी चीज हो गई है। एक सच जो इंसान नहीं जानता, जिसने सिर्फ और सिर्फ बोलने को तरजीह दी और सुनना छोड़ दिया, उसने अनजाने में धीरज, गहराई और रिश्तों का मोल खो दिया है। चलिए अगला और अंतिम गाना, उजाला फिल्म का गाना है ये, शम्मी कपूर और माला सिन्हा पर फिल्माया गया ये गाना।

यही था आज के सुरीला सफर कार्यक्रम का अंतिम गाना, और आपने इस कार्यक्रम को धैर्य पूर्वक ध्यान से सुना और विषय को लेकर बहुत सारी बातें आपने लिखी, उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और आपको ये सुनाना चाहते हैं कि अब ये कार्यक्रम संपन्न होता है। मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: implementation of Paris Agreement at pre-COP 31 meeting in Fiji today. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों के लिए समाधान पर केंद्रित। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और अफ्रीका की युवा आबादी को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। रिजर्व बैंक ने लगभग चार वर्ष में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि कर इसे 5.5% किया। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। और भारत ने 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले आज फिजी में एक बैठक में पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
2: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों की समस्याओं का समाधान तलाशने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है।
2: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती है। तब इम्पोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इम्पोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश अपनी चुनौतियों का स्थायी समाधान तलाश रहा है।
2: जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की समस्या, ऐसा लगता था कि यह अंतहीन है, लेकिन आज आर्टिकल 370 की दीवार पूरी तरह टूट चुकी है। इसी तरह नक्सलवाद की समस्या को देश का दुर्भाग्य मान लिया गया, लेकिन आज इसकी कमर तोड़ी जा चुकी है। जो आतंकवाद भारत के भाग्य को ही चुनौती दे रहा था, लेकिन यह भारत की अदम्य इच्छा शक्ति है, हमने घर में घुसकर मारा और दुश्मनों को बता दिया कि भारत की ताकत क्या है।
1: इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बड़ी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के सबसे गरीब और वंचित वर्गों के कल्याण को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार की पहल की भी सराहना की।
3: जब किसी व्यक्ति के साथ उनकी सोच उनकी दृष्टि 140 करोड़ लोगों का संकल्प बन जाता है तो वो एक सामूहिक स्वप्न बनता है। जो आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं वही विकसित भारत 2047 के सूत्रधार हैं। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आपके देश के लोगों को शक्ति की सप्तधारा का रोड मैप दिया है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा

0: के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प सभा सेवा ज्योति यात्रा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, नक्सलवाद की समाप्ति और देश के बुनियादी ढांचे को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए हैं।
1: जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, ये 25 साल स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे। ये 25 साल में गरीबी से मुक्ति, सुरक्षित भारत, धारा 370 हटाना, नक्सलवाद समाप्त करना, राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाना, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपरी सीमा तक ले जाना और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने खुद को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। उधर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज सभी जिलों में सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में जीपीओ के पास पटेल पार्क में सेवा ज्योति यात्रा के अंतर्गत विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 25 वर्ष की जनसेवा में असंभव को संभव कर दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी द्वारा भारतीय कृषि के बदलाव पर लिखे गए एक लेख को साझा किया। ये लेख प्रधानमंत्री मोदी की 25 वर्षों की यात्रा को दर्शाता है। इसमें गुजरात सहित भारतीय कृषि के व्यापक परिवर्तन की जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्ष की जनसेवा पूरी कर ली है। जापान, नाइजीरिया, डोमिनिका और बेल्जियम के नेताओं ने इस अवसर पर उन्हें बधाई दी है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने भारत के विकास में उनके नेतृत्व और योगदान की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट टी वेवर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और भारत बेल्जियम के बीच साझेदारी को और गहरा करने की तत्परता व्यक्त की। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा का महत्व अब केवल भारत ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देशों और ग्लोबल साउथ के लिए भी बढ़ गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर जयशंकर ने अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्र में भारत की प्रगति को भी रेखांकित किया। उन्होंने भारत और अफ्रीका के युवाओं को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री जयशंकर ने ईंधन, खाद्य, उर्वरक और वित्त के लिए अनुकूल आपूर्ति श्रृंखलाओं के महत्व पर बल दिया और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी में व्यापार, अवसंरचना, क्षमता निर्माण, मानवीय सहायता और आपदा राहत, कृषि, स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा शामिल है। उन्होंने घाना में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ने फिजी में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 31वें सम्मेलन COP31 से पहले एक सत्र में जलवायु परिवर्तन पर और अधिक ठोस कार्रवाई तथा पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु संबंधी दृष्टिकोण में मौजूदा कमियों को दूर करना और वर्तमान जलवायु प्रतिबद्धताओं को

0: पूरा करना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वैश्विक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए लगभग 4 वर्ष बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions,
2: बदलते आर्थिक तथा वित्तीय हालात, हाल की घटनाक्रमों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से प्रमुख नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 5.25%, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 5.75% कर दिए गए हैं। समिति ने 2 के मुकाबले 4 मतों से अपने रुख को सोच समझकर मौद्रिक शक्ति की ओर बदलने का भी फैसला किया है।
1: कैलिब्रेटेड टाइटनिंग बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 4-2।
0: रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 4 दिन का ये आयोजन आज शुरू हुआ। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का विषय है बिना किसी सीमा के विस्तार। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में लखपति दीदी योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है।
3: ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना संचालित की जा रही है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को विभिन्न सतत आजीविका गतिविधियों के माध्यम से हर वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की आय अर्जित करने में सक्षम बनाना इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है। महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, ऋण की सुविधा, उद्यमिता के लिए मार्गदर्शन और बाजार से जुड़ने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री ने बताया है कि देश भर में अब 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
4: 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है।
3: परभणी जिले की शिल्पा देशमुख ने इस संबंध में अपने अनुभव आकाशवाणी के साथ साझा किए।
5: ड्रोन की वजह से मुझे अलग ही पहचान मिली है और मेरे उत्पन्न में बढ़त हुई है। इसकी वजह से मेरी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से अधिक हो गई है। इसलिए मुझे अब सिर्फ ड्रोन दीदी ही नहीं बल्कि लखपति दीदी के नाम से ही बुलाया जाता है।
3: ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से परिवारों, गाँव और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान करने में लखपति दीदी महत्वपूर्ण पहल है। समरजीत ठाकुर, आकाशवाणी समाचार, छत्रपति संभाजीनगर।
0: दिल्ली पुलिस ने कल के विरोध मार्च के दौरान नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में बिना अनुमति के प्रवेश करने के आरोप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ FIR दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी OSD राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में विभिन्न स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में आज गरज के साथ बौछारें पड़ने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों के लिए समाधान पर केंद्रित। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और अफ्रीका की युवा आबादी को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्ष में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि कर इसे 5.5% किया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना।

0: इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदा बहार नगमे। कार्यक्रम का पहला जो गीत है ये आज और कल, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है रवि का।

0: सेहत के कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र.
1: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है. हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1. ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व. सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है.
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी.
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है. उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है.
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर. सदाबहार नगमे कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए बहुरानी फिल्म का गाना. लता मंगेशकर की आवाज, साहिल उद्यानवी के बोल, संगीत श्री रामचंद्र का.

0: वो बताएंगे फिल्म के शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: दक्षिण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: बीन का जादू, ये फिल्म का नाम है। सुमन कल्याणपुर की आवाज, बी डी मिश्रा का लिखा हुआ गाना, संगीत एस एन त्रिपाठी का।

लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ब्लफ मास्टर फिल्म का गाना, राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

अरे हुस्न चला कुछ ऐसी चाल दीवाने का पूछना, हुस्न चला कुछ ऐसी चाल दीवाने का पूछना, प्यार की कसम।

आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, रवि का संगीत, फिल्म का नाम भरोसा। आप ये गीत सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: सेबी कडून इन्व्हेस्टर जागरूकता उपक्रम. अधिक माहितीसाठी सेबी इन्व्हेस्टर वेबसाइट वर विजिट करा किंवा सेबी सारथी ऍप डाउनलोड करा.
1: श्रोत्यो, आपण ऐकत आहात आकाशवाणीचं अमरावती केंद्र FM 101.5 मेगाहर्ट्सवर, प्रसार भारतीच्या वेब OTT प्लॅटफॉर्मवर आणि न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर. दुपारचे 3:12 आणि 31 सेकंद झाली आहेत. आता विविध भारतीय प्रसारण सेवेचे कार्यक्रम आम्ही मुंबई केंद्राहून पुन्हा सहक्षेपित करीत आहोत. कृपया प्रतीक्षा करा.
2: आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है, कई बार ये जिंदगी में बोझ भी बन जाती है.
3: बिल्कुल.
2: भविष्य, आदमी भविष्य की तरफ एक कल्पना के चित्र में ही जीने लगता है. उसे लगता है कि जब वो मिल जाएगा तब मुझे खुशी होगी, और वो जो दिन है ना कि ये मिलने पर खुशी होगी या ये महत्वाकांक्षा पूरी होने पर खुशी होगी, वो दिन जिंदगी में कभी भी नहीं
3: आता नहीं है, क्योंकि हम वैसी मेहनत नहीं करते ना चंचल. उस दिशा में हम अपना कार्य कर नहीं रहे होते, केवल ख्वाबों की दुनिया में बैठे होते हैं. इसलिए निराधार जो महत्वाकांक्षाएं होती है वो हमें थकाती है, क्योंकि हम हर दिन खुद को असफल महसूस करते हैं. और आवेग जो है महत्वाकांक्षा का सबसे बड़ा दुश्मन है. आवेग का अर्थ ही है बिना सोचे तुरंत एक्शन रिएक्शन दे देना, प्रतिक्रिया दे देना.
2: और इसीलिए केवल आवेग में जो निर्णय लिए जाते हैं वो हमें बहुत ज्यादा भविष्य में नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. जैसे हर थोड़े समय के बाद अपने करियर की फील्ड को बदल लेना, जॉब को बदलना, दिखावे में आकर EMI की सुविधाओं पर चीजें लेते जाना, गुस्से में इस्तीफा दे देना अपनी नौकरी पर, किसी से रिश्ता तोड़ देना. तो आवेग में किसी भी तरह का निर्णय हो, चाहे वो निजी तौर पर हो या आपके कामकाजी तौर पर हो, ये आपको तकलीफ तो देगा ही देगा.
3: बिल्कुल देगा. और आपका जो एक हर्डल आपकी जिंदगी में हमेशा आती रहेगी आपके इस व्यवहार से भी. ऐसी तमाम समस्याओं का समाधान यही है चंचल, की महत्वाकांक्षा में अनुशासन को हम जोड़े. सबसे बड़ी बात है कि भविष्य न तो सिर्फ सपने देखने से बनता है और न ही जोश से बनता है. एक सूत्र याद रखें हम कि महत्वाकांक्षा दिशा है, अनुशासन मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है, और आवेग जो है वो स्पीड ब्रेकर है.
2: हाँ, यानी कि जब भी आवेग आए तो थोड़ा थम जाइए, रुक जाइए, अपनी गति को धीमा कर दीजिए. और महत्वाकांक्षा सिर्फ दिखावे के लिए ना हो इस बात का भी ध्यान रखना है.
3: बिल्कुल.
2: असली महत्वाकांक्षा शोर नहीं करती, वो चुपचाप से रोज हमें जगाती है. क्योंकि हमारी अगर कोई सच्ची महत्वाकांक्षा है तो वही हमारा भविष्य बना सकती है. अगर 3 चीजों से हम उसको जोड़ दें, अनुशासन, धैर्य और भविष्य.
3: बिल्कुल. और भविष्य में कुछ अच्छे आपको नतीजे चाहिए तो अपनी महत्वाकांक्षा को थोड़ा छोटा कर लें, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं. 5 साल का लक्ष्य सीधे न देकर उसे 6 महीने के टुकड़ों में तोड़कर आप तैयारी कर सकते हैं, है ना.
2: और कोई भी बड़ा फैसला अगर आपको लेना है, जैसे नौकरी छोड़ना है, कोई बड़ा निवेश करना है, किसी को गुस्से में जवाब देना, इन सब के लिए अपने आप को हमेशा 2 से 3 दिन का समय दे देना चाहिए कि चलिए थोड़ा रुक जाए, फिर ये काम करेंगे. अगर नौकरी छोड़ने का झट से मन में विचार आया तो नहीं, कुछ रुक जाते हैं, आज ही नहीं छोड़ना. कोई बहुत बड़ा निवेश करने का सोचा तब भी थोड़ा रुक जाइए. तो जैसे शेयर मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ बहुत जल्दी अप डाउन आते हैं.
3: बिल्कुल.
2: तो कोई भी बड़ा निर्णय है थोड़ा सा रोक लें अपने आप को, क्योंकि मनोविज्ञान भी कहता है कि 90% आवेग जो है वो 72 घंटे में मर जाता है. इसी तरह से कोई बड़ा नुकसान अगर हमारा होने वाला है तो उससे भी हम बच जाते हैं.
3: बिल्कुल, आपने सही बात कही. शेयर बाजार की तरह जो सेंसेक्स ऊपर नीचे होता है ना, उस तरह से हमारे विचार भी ऊपर नीचे होते रहते हैं. लेकिन अगर आपका फैसला जो है

0: कभी ऊपर नीचे नहीं होगा, हाँ। अटल होगा वो इरादा। तो भविष्य बनाने वाले काम का 80% समय बोरिंग होता है, रोज वही अभ्यास है, वही बचत है, वही पढ़ाई है, लेकिन जो व्यक्ति इस बोरियत को सह गया वो ही आगे निकल जाता है।
1: हर इंसान सोचता है ना कि बड़ा आदमी बनना है, ये कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती, ना ही फैंटेसी है। महत्वाकांक्षा होती है हमारे भविष्य का नक्शा बनाना, और जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और नियोजनबद्ध तरीके से उस पर काम भी करते हैं तो वही महत्वाकांक्षा है जो हमारा भविष्य बनाती है, क्योंकि इसमें क्या, कब, कैसे, ये तीनों
0: चीजें आती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही चंचल तूने। और पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने क्या कहा था, जो हमारे कितने बड़े आइडियल है आज भी
1: सबके लिए किसी ना किसी तरह से वो प्रेरणा के।
0: बिल्कुल, उन्होंने कहा था सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो नींद न आने दे।
1: क्या बात,
0: मतलब सपना बड़ा रखो पर उसे पूरा करने के लिए रोज नींद कुर्बान करने की तैयारी में भी रखो।
1: बिल्कुल, और इसी तरह से हमें अगर इसे आसानी से समझना चाहें तो महत्वाकांक्षा हमें गाड़ी में बिठाती है और आवेग उसका स्टेयरिंग छीन लेता है, और अनुशासन जो है वो हमें
0: मंजिल तक पहुंचा देता है। और इसलिए बड़ा सोचो पर आज के छोटे फैसले को हल्के में मत लो, क्योंकि भविष्य कल नहीं बनता, वो आज के आवेग पर काबू पाने से बनता है।
1: और देखिए हमारे साथी लिख रहे हैं कि महत्वाकांक्षा और भविष्य निर्माण, महत्वाकांक्षा वो जीवन को आगे बढ़ने के लिए दिशा देती है। सपने तभी सार्थक होते हैं जब उन्हें मेहनत, धैर्य और सही दिशा का साथ मिलता है। भविष्य अचानक से नहीं बनता, वो आज के छोटे छोटे प्रयासों और निर्णयों से आकार लेता है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण उन्होंने भी दिया है, और आगे लिख रहे हैं कि साधारण परिस्थितियों से आगे बढ़कर उन्होंने भी अपने ज्ञान, परिश्रम, दृढ़ संकल्प के बल पर ही देश के महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बनने का गौरव भी प्राप्त किया था।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और उनका जीवन तो हमें सिखाता है चंचल, हाँ। कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, बड़े सपने और निरंतर प्रयास ही हमारा भविष्य बदल सकते हैं।
1: और भी आगे संदेश हैं?
0: बस अभी तो हमने इतने ही पढ़े हैं, एक गाना सुन ले ताकि कार्यक्रम की थोड़ी दिशा बदल जाए।

0: चंचल
1: हाँ, तो बड़ा प्यारा गीत तुमने सुनवाया अभी, और हमारे श्रोता भी बहुत पसंद करते हैं इस गीत को, और साथ ही हमारी जो सखियां हैं वो पसंद करती हैं नंदना साड़ी को भी।
2: हाँ, और कई सखियां ऐसी भी हैं जिन्हें नंदना साड़ी के बारे में नहीं पता था। हमारी एक सखी ने लिखा भी है कि इस साड़ी के बारे में, भैया इसका नाम जो है उन्होंने
1: पहली बार सुना है।
2: तो चलिए बताते हैं कि नंदना साड़ी या नंदना प्रिंट मध्य प्रदेश के कोई एकदम गुमनाम 400 साल पुरानी ये कला है। और ये साड़ी मध्य प्रदेश के नीमच जिले के तारापुरा और उम्मेदपुरा गाँव की एक कला है, और इसे वहीं के खास समुदाय के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी से आज भी जिंदा रखा हुआ है।
1: तो ये नंदना जो प्रिंट है बुनाई नहीं है चंचल, बल्कि हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग और डाबू रेजिस्ट प्रिंट की तकनीक है। यानी पहले के समय में कुछ खास जनजाति की महिलाओं के मोटे सूती घाघरे लहंगे इसी प्रिंट के बनते थे, पर अब साड़ी, सूट, दुपट्टा, बेडशीट और सब इसी से बनने भी लग गए हैं। साथ ही नंदना साड़ी की खासियत यही है कि ये 100% प्राकृतिक और इको फ्रेंडली है। इसमें केमिकल नहीं लगता, इसके रंग बनते हैं नील यानी इंडिगो, अनार के छिलके, हरड़ा, अलेजरीन और लोहे के जंग जैसी चीजों से ये साड़ी बनती है, और कपड़े को नरम करने के लिए अरंडी के तेल और सोडा के पानी में इसको गलाया जाता है।
2: और देखिए ना, हमारी एक सखी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है। वो कहती हैं कि मैं गुस्ताखी के लिए माफी मांगते हुए अपनी सखियों को इस सखी सहेली के मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगी।
1: क्या?
2: कि साड़ी के बारे में मेरा ये कहना है कि गूगल से हमें सभी तरह की जानकारी मिल जाती है, लेकिन कुछ चीजों की जानकारी व्यक्तिगत रूप से हम सभी बांटेंगे तो वो ज्यादा परफेक्ट होती है। तो अगर किसी के पास इस टाइप की साड़ी या इस टाइप के कपड़े होते हैं तो वो अपनी बात को साझा करें, और ये बड़ी अच्छी बात लिखी है।
1: हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात, इन्होंने हमारी बात कह दी एक तरह से। हम भी अपने सखियों से अक्सर कहते हैं कि भाई आपके पास ये नंदना या कोई भी साड़ी है तो उसका जिक्र कीजिए। अभी भी हम कहेंगे अगर आपके पास नंदना साड़ी है और या आप कभी लेने गई थी, आपको पसंद आई, आपने किसी को गिफ्ट दी, तो उसका जिक्र अभी आप कर सकती है, तो हम उन्हें शामिल कर लेंगे।
2: तो ये जो साड़ी है इसका लॉट जो है वो लगभग 800 मीटर का होता है, और उसे तैयार करने में करीब करीब 18 स्टेप और 25 से 30 दिन की मेहनत लग जाती है। इसकी जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें कपड़े को गलाना, अरंडी के तेल में भिगोना, थोड़े से धुलाई करना, हरड़ा का पाउडर लगाना, बिछलाई यानी कि गोंद और मिट्टी की छपाई होती है ना, उसको रोकना, ब्लॉक की छपाई, नील में रंगाई, धूप में सुखाना, फिर अंत में धुलाई, और इतने स्टेप से होकर जब ये गुजरता है ना, तभी कपड़ा जो है वो पक्का
1: होता है। यानी वो हीना की तरह हो गई, पिसकर ही हीना जो है है ना। और नंदना में पारंपरिक रूप से 4 मुख्य बूटे होते हैं, और हर डिजाइन और मोटिफ का अलग मतलब होता है। मिर्ची का मतलब है तीखापन और बुरी नजर से बचाओ, तो चंपाकली का मतलब है कि इसे खास समुदाय की अविवाहित लड़कियां पहनती थी। अंबा का मतलब है कि इसे साड़ी और गर्भावस्था के समय शुभ माना जाता था, और जलम यानी बूटा का मतलब है समृद्धि का प्रतीक। तो आजकल इनमें अमरूद, यूकेलिप्टस, सागवान, नीम के पत्तों के इको प्रिंट भी बन रहे हैं।
2: और इस साड़ी में जो है रंग का विज्ञान और इसकी मान्यताएं वो भी अलग अलग हैं। नीले और हरे रंग जो हैं वो इसीलिए खेत में जो काम करने वाले होते हैं उनके लिए होता है, ताकि वो गंदा कम दिखे।
1: अच्छा।
2: और नील को सबसे शुभ भी माना जाता है, इसीलिए कारीगर भी ये मानते हैं कि गाय जो है वो नील का पानी पीती है तो ताकतवर बनती है, और नील के लगे हाथ से खाना खाने से पेट की बीमारियां भी नहीं होती, कुछ पारंपरिक मान्यता है।
1: अच्छा, ऐसा। तो ये साड़ी बनाते समय इन सब बातों का भी ख्याल रखते हैं। और नंदना साड़ी में जितनी बारीकी से काम किया जाता है तो साड़ी की कीमत भी उतनी ज्यादा, यानी एक असली हाथ की बनी नंदना साड़ी 2500 से लेकर 8 से 10 हजार तक की होती है। और पहले तारापुर उम्मेदपुरा में लगभग 100 से ज्यादा परिवार ये काम करते थे, और अब सिर्फ 8-10 परिवार ही बचे हैं, क्योंकि ये बहुत थकाऊ और समय लेने वाला काम है, और बाजार में इसका केमिकल प्रिंट भी मुश्किल से मिलता होगा, तो कम लोग अब इसको बनाते हैं।
2: हाँ, क्योंकि कई बार

0: कारीगरों को भी लगता है ना कि मेहनत बहुत ज्यादा है और उसकी अपेक्षा में जो दाम है वो उनको नहीं मिल पाते, और इस तरह से जो बहुत सारी कलाएं हैं वो लुप्त होती जा रही हैं। तो हम सभी को मिलकर इनको बढ़ावा देना चाहिए, और इसीलिए सरकार अभी से जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया में है और इसका जरिया बना रही है। बनवारी जरिया, पवन जरिया को राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 और स्टेट अवार्ड 2002 और 2022 में भी मिल चुका है। व्यवसाय, राजनीति, फिल्म जगत, हर क्षेत्र में काम करने वाली जो महिलाएं हैं वो भी इस साड़ी को अपनी पसंद में शुमार करते हैं।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर है नंदना साड़ी। तो हमारी सखियां बताएं कि उनके पास नंदना साड़ी है भी कि नहीं।
0: तो हम एक गीत सुन लें।
1: हाँ,

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं।
1: बिल्कुल, तो चंचल बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस इन दिनों हम मना रहे हैं, विश्व कपास दिवस, और इसकी बड़ी महत्ता है। हम सभी जानते हैं कि ये दिन जो है आज के दिन खास मनाया जाता है, और कपास को सफेद सोने के नाम से भी हम जानते हैं।
0: हाँ।
1: क्योंकि ये सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि दुनिया भर में करोड़ों लोगों की रोजी रोटी भी है।
0: सही कहा मंदाकिनी जी, और इस दिन का आयोजन, इसकी जो पहल की गई थी वो 7 अक्टूबर 2019 को जिनेवा में हुई, जब विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय में पहली बार कपास दिवस मनाया गया था। और इसे शुरू करने की मांग अफ्रीका के 4 सबसे कम विकसित कपास उत्पादक देशों ने की थी। ये 4 देश हैं बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली। और इन देशों ने कॉटन फोर भी कहा जाता है। आगे चलकर बाद में कोट डी या आईवोर भी इसमें शामिल हो गए।
1: हाँ बिल्कुल, 30 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता दी और एक प्रस्ताव पारित करके 7 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड कॉटन डे के रूप में मनाने का फैसला किया। और ये दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कपास दुनिया के 5 महाद्वीपों में करीब 75 से ज्यादा देशों में उगाई जाती है
0: जी।
1: और दुनिया भर के 10 करोड़ परिवार सीधे कपास उत्पादन से जुड़े हैं और लगभग 28 करोड़ लोग टेक्सटाइल सेक्टर में भी काम करते हैं।
0: बिल्कुल, जब भी हम कोई कपड़ा पहनते हैं तो इस बात के महत्व को हम जरूर समझें कि बहुत सारे परिवार हैं जो इससे रोजी रोटी भी कमाते हैं, और बहुत सारे कहते हैं ना कि अलग अलग कड़ियों से होकर कोई कपड़ा हम तक पहुंच पाता है।
1: वही तो अभी आपने कहा ना कि देखिए करीब 75 से ज्यादा देशों में ये कपास होती है, कितना महत्वपूर्ण है ये और कितना रोजगार मिलता है इससे ना।
0: और बहुत सारे कम विकसित देश हैं उनके लिए कपास का कुल निर्यात 50% तक हिस्सा है। कपास से सिर्फ कपड़ा नहीं, कपास के बीज का तेल, पशु आहार और कागज भी बनता है। महिलाओं की भी बहुत बड़ी भागीदारी होती है इसमें। कपास चुनने, उसकी प्रोसेसिंग में 40% ज्यादा काम जो है वो महिलाएं ही करती हैं। खाद्य और कृषि संगठन का हर प्रयास हर साल जैविक कपास, कम पानी वाली खेती और किसानों को उचित दाम मिले, इसी पर होता है।
1: हाँ, और अगर हम अपने देश की बात करें भारत की, तो भारत और कपास का बहुत ही गहरा संबंध है चंचल, और इसीलिए ये दिन भारत के लिए बहुत खास है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। दुनिया की 26% कपास ही उगती है। महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, ये मुख्य उत्पादक राज्य हैं, और भारत की कपास को काली मिट्टी में उगने के कारण उच्च गुणवत्ता के भी माना जाता है।
0: बिल्कुल, और कपास की खेती में किसानों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौतियां होती है ना, वो है जलवायु परिवर्तन, कीटनाशकों का ज्यादा उपयोग, किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कम दाम मिलना, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं वो होती हैं, चुनौतियां होती हैं। इसीलिए विश्व कपास दिवस मनाने का उद्देश्य यही होता है कि कपास को सिर्फ एक वस्तु या पदार्थ या नहीं समझा जाए, बल्कि गरीबी उन्मूलन और सतत विकास के साधन के रूप में भी इसको हम देखें। और वैसे भी संयुक्त राष्ट्र ने इसकी परमानेंट थीम है, स्थायी थीम जो रखी हुई है वो है कॉटन फॉर गुड, लेकिन इस साल एक उपशीर्षक इसके साथ जोड़ा गया है, यानी 2026 के लिए जो थीम है वो है कॉटन फॉर गुड, बिल्डिंग प्रॉस्पेरिटी थ्रू ट्रेड ट्रांसफॉर्मेशन एंड पार्टनरशिप। इसका मतलब है कपास अच्छाई के लिए व्यापार परिवर्तन साझेदारी के माध्यम से समृद्धि का निर्माण
1: करना। बिल्कुल,
0: तो चलिए भी गीत सुन ले
1: जी।

0: बहुत ही सुंदर गीत तुमने सुनवाया है चंचल, और हमारी सखी और सखा इस गीत का आनंद भी ले रहे होंगे, जैसे कि हम प्रकृति का आनंद लेते हैं।
1: हाँ, और प्रकृति जो शब्द है ये संस्कृत का बहुत गहरा शब्द है, जो प्र और क्र इनसे मिलकर, जो इसके मूल शब्द हैं उनसे मिलकर बना है, और इसके कई मतलब अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से। प्रकृति का सामान्य अर्थ वैसे अगर देखा जाए तो हम सभी जो समझते हैं वो नेचर या प्रकृति, कुदरत से ज्यादा समझते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और प्रकृति मतलब वो जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया है, जैसे पेड़, पहाड़, नदी, जानवर, मौसम, पर्यावरण, ये सब चीजें। या हम कहते ना अपनी प्रकृति के बारे में कि हम अगर किसी
0: हमारी प्रकृति ये है
1: तो वो भी हमने नहीं बनाई है। प्रकृति का मतलब ही ये है जो कुदरत
0: ने बनाया है। जी, तो आज हमने शब्द जो दिया था हमारे श्रोताओं को प्रकृति, और श्रोताओं ने अपने अपने विचार हम तक पहुंचाए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जिसका निर्माण प्रकृति, जिसका निर्माण इंसान ने नहीं ईश्वर ने किया है, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, जिसमें इंसान, पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदियां, पर्वत, समुद्र, वायु, मिट्टी समेत प्राकृतिक प्रक्रियाएं सभी शामिल हैं। संस्कृत में प्रकृति शब्द में प्राकृ से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है मूल स्रोत या मूल आधार, जिससे कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, और इसे कायम बनाए रखने में हम इंसानों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। प्रकृति ने अपनी गोद में बिठाकर हर जीव को इनकी जरूरत के अनुसार सुख सुविधा दी है, उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी हम इंसानों की बनती है। इंसान का प्रकृति से हो भाईचारा, यही है पैगाम हमारा।
1: क्या बात है, अच्छा संदेश है। और प्रकृति शब्द पर हमारे जो श्रोता हैं वो विचार अपने अपने प्रकट कर रहे हैं। एक संदेश में लिखा गया है, प्रकृति का व्यापक अर्थ है संपूर्ण भौतिक जगत, ब्रह्मांड, और इसमें पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, जीव जंतु, पर्यावरण शामिल है, जो इंसानों द्वारा नहीं बनाए गए, प्रकृति प्रदत्त है। किसी भी प्राणी, वस्तु का जन्मजात गुण उसका स्वभाव या प्रकृति कहलाता है। आग की प्रकृति गर्मी देना है। मनुष्य का शरीर भी प्रकृति के पांच बुनियादी तत्वों, क्षिति यानी मिट्टी, जल पावक अग्नि, गगन आकाश और समीरा यानी वायु से मिलकर बना हुआ है। साधु और बिच्छू, बिच्छू का डंक मारना उसकी प्रकृति है, और उसके बाद साधु को उसी को
0: पानी से बचाना,
1: ये साधु की प्रकृति।
0: बहुत सुंदर बात, इन्होंने एक शब्द से कितनी ही बातें निकाल दी हैं, जिनका हमने कहा था कि आप किस अर्थ में प्रकृति को लेते हैं। प्रकृति, एक श्रोता लिखते हैं कि प्रकृति केवल हमारे चारों ओर फैले पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत और खुले आसमान का नाम नहीं है, बल्कि जीवन का मूल आधार है। मनुष्य का अस्तित्व पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है, क्योंकि ये हमें बिना किसी भेदभाव के सांस लेने के लिए, हवा पीने के लिए पानी, और जीने के लिए भोजन भी देती है।
1: मतलब प्रकृति कहते हैं ना कि हमारे

0: भाव को प्रकृति कहा जाता है कि भाई इस इंसान की प्रकृति है बहुत गुस्सा करना, इस इंसान की प्रकृति है बहुत शांत है ना, तो हमारे स्वभाव को भी प्रकृति कहा जाता है। तो इसीलिए हमने शुरुआत में कहा था कि प्रकृति के अलग अलग अर्थ अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से हो सकते हैं। प्रकृति एक संदेश में पढ़कर सुना रही हूँ मंदाकिनी, जिसमें लिखा है कि प्रकृति केवल हमारे चारों ओर पेड़ पौधे पर्वत नदियां खुले आसमान का नाम नहीं, बल्कि ये जीवन का मूल आधार है। मनुष्य का अस्तित्व पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है, क्योंकि ये हमें बिना किसी भेदभाव के सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और जीने के लिए सबसे जरूरी चीज भोजन देती है।
1: बहुत अच्छा आपने लिखा है, कम शब्दों में गहरी बात लिख दी है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि प्रकृति बड़ा बेमिसाल मुद्दा है, प्रकृति के साथ रहना और बड़ा होना सभी को लुभाता है। शाम को अस्त हुआ सूरज के नीचे सिर पर पगड़ी बांधा गडेरिया जब अपनी भेड़ बकरियों को हांकता है तो बड़ा लुभावना लगता है। सुबह में सिर पर डोकरी लेकर निकलती है मलान चीज कितनी बेमिसाल लगती है, जब उसके हाथों में चूड़ियां और सिर पर धानी चुनरिया उड़ी हो, गली से जब वो जाती है नैनाभिराम लगती है।
0: एक संदेश में लिखा है, प्रकृति हमारे जीवन का आधार है, हमारी माँ के समान है। यदि प्रकृति स्वच्छ सुंदर रहेगी तभी हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और भविष्य भी सुरक्षित रहेगा।
1: वहीं एक श्रोता का कहना है कि हमारे घर के आसपास पेड़ बहुत ही कम है, इसलिए मैंने तो छत पर ही करीब 40 गमले रख लिए हैं, नियमित देखभाल करती हूँ और इस तरह प्रकृति के बीच कुछ समय गुजार लेती हूँ। बिल्कुल अच्छा कहा आपने, गुजर जाता है आपका वक्त ऐसे तो।
0: और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि वो प्रकृति के बीच में आनंद लेते हैं, तो भाई इस प्रकृति की रक्षा सुरक्षा हमारे ही हाथों में है।
1: बिल्कुल,
0: और अब हमारे हाथों में है कि
1: हम गीत सुनवा दें।

0: बनाया जाता है ना।
1: हाँ.
0: तो ये गुड़ जो है सफेद चीनी के बिल्कुल विपरीत होता है, प्राकृतिक गुड़ है, इसमें आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है और जिंक जैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ मौजूद रहते हैं।
1: तो चलिए क्यों ना व्यंजन भी इस कहते हैं ना कि सेहतमंद जो चीज है गुड़ उसे ही बना जाए। तो गुड़ के शक्कर पारे बनाने के लिए एक बाउल में एक कटोरी आटा ले लें और एक बड़ा चम्मच भर के मोयन डालें। एक बाउल में थोड़ा सा पानी डालकर गुड़ को गला दीजिए ताकि वो पहले से ही पिघल जाएगा और गैस पर जलाकर इसको या तो पिघला भी सकते हैं अगर आपने पहले से नहीं रखा है तो। इस पिघले हुए गुड़ के आटे से पानी को गूंदना है,
0: इसके पानी से आटा को गूंदना है, गुड़ के आटे से नहीं गूंदना है।
1: गुड़ का जो पानी हुआ है ना गाड़ी गाड़ी चाशनी
0: आपने लग रहा है कि फटाफट बनाऊं और खाऊं।
1: तो ये जो गुड़ की चाशनी बनाई इसे हमने आटा गूंद लिया और कढ़ाई में गरम गरम घी या तेल डालकर उसमें धीमी धीमी आंच पर तलिए तो शक्कर पारे तैयार
0: हो जाएंगे। वाह क्या बात है, इच्छा हो गई है खाने की। और एक देखिए गुड़ की लापसी भी हमारे घरों में बनती है चंचल। गेहूं के दलिये को घी डालकर हल्का भूरा होने तक थोड़ा हम सेक लेते हैं, फिर उसमें गर्म पानी डालकर कुकर में एक सीटी दे देते हैं और गुड़ में पानी डालकर पिघला लें, फिर छानकर कुकर में बने दलिये में डालें, थोड़ा और पकाएं, देसी घी डालें, इलायची डालें, कुछ मेवा डालना चाहें तो डाल दें। पौष्टिक और स्वादिष्ट जो है लापसी तैयार हो जाती है और पुराने समय में गांवों में शादी ब्याह में भी ये बहुत ज्यादा बनाई जाती
1: थी। सच्ची में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती
0: मीठा मिष्ठान के रूप में लापसी ही बनाई जाती थी। बचपन में हमने बहुत जगह लापसी का सेवन किया है
1: और जब हम कहते हैं ना कि जब किसी का स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो पेट को हल्का रखने के लिए भी खिचड़ी और लापसी इसी तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं, विकल्प होते हैं खाने के लिए। तो गुड़ की खीर के बारे में भी हमारे श्रोताओं ने लिखकर भेजा है कि हमारे प्रांत में छठी और जन्मदिन की नई बहू जन्मदिन या हो या कोई नई बहू आती है तब त्योहारों पर चने की दाल पूरी गुड़ की खीर जरूर बनती है और छठ पूजा में भी जो गुड़ की खीर है वो बनाई जाती है और इसी से सूर्य देवता का भोग लगाया जाता है। तो बासमती चावल में दूध को पकाना है और जब खीर गाढ़ी हो जाए पककर तब गुड़ को अलग से पिघलाकर थोड़ी ठंडी होने पर ऊपर से पिघले हुए गुड़ को मिला देना है, फिर इलायची नारियल और किशमिश मिला देने या जो भी आप मेवे डालना चाहें वो मेवे डाल सकते हैं। इसी तरह से स्वादिष्ट खीर तैयार हो जाती है। एक दूसरा तरीका इन्होंने बताया है कि गुड़ के पानी में चावल को पका सकते हैं क्योंकि चावल पकने में बहुत ज्यादा समय लगता है और जब चावल पक जाएगा तो ऊपर से गाढ़ा किया हुआ रबड़ी नुमा दूध है वो मिला दीजिए तो खीर तैयार हो जाती है। इस तरह की खीर में ये ध्यान रखा जाता है कि गर्म गर्म खीर में या दूध में जब गुड़ डाला जाता है तो फट जाता है, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है।
0: हाँ मतलब बनाते समय हमें ध्यान तो रखना ही पड़ता है, देखिए कि कोई चीज से किसी तरह का नुकसान नहीं हो जाए। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि गुड़ के पुए भी बनते हैं।
1: हाँ।
0: मन हो गया है पुए खाने का। हमें अपना बचपन याद हो गया जहाँ हमारी माँ हमें गुड़ के पुए खिलाया करती थी। ये लिखते हैं कि आटे के साथ मिलाकर और जो मुझे पसंद है वो है पूरन पोली, जिसमें चने की दाल को भिगाकर उसको उबालकर गुड़ के साथ घी में सेकते हैं और उसमें गुड़ डालते हैं, साथ में जो सूखे मेवे पसंद हो वो डाल दें, पेस्ट तैयार करें, आटे की लोई में भरकर घी से सेके और जो बहुत ही स्वादिष्ट भी लगती है।
1: तो भाई इतने मीठी चीजों की बात चल रही है तो मीठा गाना भी तो होना चाहिए।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: अब हम क्या ढूंढने वाले हैं कि गुड़ हमने कहाँ रखा है रसोई में।
1: हाँ भाई, और इतने मीठे मीठे गाने सुन रहे हैं, थोड़ी सी मिठाई की बात ना हो, वो भी ऐसा मीठा जो हमारी सेहत के नुकसान भी ना पहुंचे, वो थी गुड़ की।
0: गुड़, बिल्कुल वही तो हमने कहा कि गुड़ एक पारंपरिक और कहते हैं कि अपरिष्कृत जो है प्राकृतिक मीठा ठोस पदार्थ इसको माना जाता है, जिसे गन्ने के रस या ताड़ या खजूर के रस को उबालकर और गाढ़ा तैयार करके

0: हाँ तो चंचल, हमारे श्रोताओं को भी इंतजार है कि आगे हम गुड़ के लेकर क्या रेसिपी बताने वाले हैं, है
1: जी,
0: ना।
1: तो गुड़ को लेकर हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि गुड़ हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, खासकर आने वाली पीढ़ियों के लिए। और कुछ मिठाइयां हैं जैसे गुड़ के शक्कर पारे, गुड़ का रसगुल्ला, ये इन्हें हमारे जो श्रोता लिख रहे हैं इनको बड़े पसंद है। और चीनी के रसगुल्ले जो तैयार किए जाते हैं, इसमें चाशनी की जगह अगर गुड़ की चाशनी बना दी जाए तो ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। और गुड़ की तो हम पंजीरी भी बनाते हैं, और ये पंजाबी में शायद लिख रहे हैं कि पंजाबियों में तो ये बहुत ज्यादा बनाई जाती है। और गुड़ को भून कर इसकी पंजीरी तैयार की जाती है, घी डाला जाता है, भूना जाता है, पूरे तरीके से इसको बनाया जाता है, तो बहुत स्वादिष्ट लगती है।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सर्दियों में गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं, तो गुड़ से बनाने से वो पौष्टिक हो जाते हैं। गुड़ के गुलगुले बनाइए, और गुड़ के भजिए कह रहे हैं, और मीठे भजिए बना सकते हैं। गुड़ को गर्म पानी में पिघलाकर उसे छानकर उसमें आटा, नारियल की कतरन और इलायची डालकर घोल बनाकर तेल में पुए तल लीजिए। गुड़ और चने की दाल की पूरन पोली भी आप बना सकते हैं, है ना।
1: इसी तरह से जब भाई चाय का समय होता है ना, तो बहुत सारे लोगों को
0: 3 बजे चाय चाहिए होती है। इन्होंने मेरे मन की बात कह दी। मैं जब से सोच रही थी कि गुड़ की चाय जब हम पीते हैं, या कई बार चाय फीके रखते हैं और हाथ में गुड़ की डली लेकर भी सर्दियों के दिनों में हम लोग ऐसा चाय का सेवन करते थे, तो लिख रहे हैं कि ऐसे भी गुड़ की चाय बनाकर पी जा सकती है
1: जी। और बिना फटे स्वादिष्ट और परफेक्ट गुड़ की चाय बनाने की आसान से विधि भी इन्होंने लिख कर भेजी है कि इसके लिए सामग्री चाहिए 2 कप चाय आप दोनों दीदियों के लिए।
0: क्या बात है।
1: 1 कप पानी, 2 कप दूध जो कि अलग से गर्म किया हुआ है, यानी कि पूरी तरह से औंटाया हुआ, खौलाया हुआ ये दूध है। चाय पत्ती चाहिए 2 छोटे चम्मच, और चाय पत्ती की मात्रा आप अपने हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा कम कर लीजिए। आपको बहुत कड़क पीनी है तो ज्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें चाहिए गुड़ थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ या पाउडर के फॉर्म में बनाया हुआ, 2 से 3 चम्मच चाहिए, या फिर स्वाद के अनुसार थोड़ा सा कम और ज्यादा भी कर लीजिए। अदरक चाहिए 1 इंच कुचला हुआ, हरी इलायची चाहिए 2, वो भी अच्छे से कुचली हुई या पाउडर बनाया हुआ। इसे बनाने के लिए एक पैन में या सॉस पैन में 1 कप पानी डालना है, कुचला हुआ अदरक और हरी इलायची डालकर पानी को अच्छी तरह से उबलने देना है। जब पानी में उबाल आ जाए तो इसमें चाय की पत्ती डालनी है, 2-3 मिनट तक इसे भी उबालें ताकि अच्छा रंग और स्वाद चाय पत्ती का आ जाए। अब इसमें पहले से गर्म किया हुआ दूध है वो डाल देना है। दूध को हमेशा उबाला हुआ या गर्म किया करके ठंडा किया हुआ दूध डालने से चाय फट सकती है, ऐसा ही ने आगे लिखकर बताया है। और दूध डालने के बाद चाय को धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है, फिर गैस को बंद कर देना है। बंद करने के बाद जो कद्दूकस किया हुआ या पाउडर के फॉर्म में लाया हुआ गुड़ है वो डाल देना है, फिर अच्छी तरह से मिला लीजिए, छान कर गर्मा गर्म गुड़ की चाय का
0: आनंद ले सकते हैं। तो आपने 2 कप चाय भेजी है ना, ये 2 कप मुझे ही पीने पड़ेंगे क्योंकि चंचल दीदी जो है चाय नहीं पीती है।
1: तो चलिए आपके लिए डबल चाय हो जाएगी, लेकिन मैं जो है ना गानों की मिठास से ही काम चला।
0: चलिए फिर।

0: मन ही मन में लड्डू फूटे, अगर ये लड्डू गुड़ के होंगे ना तो ज्यादा सेहतमंद होंगे।
1: और अभी तो हम गुड़ के लड्डू की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि गुड़ की बात है तो लड्डू भी गुड़ के ही होंगे। गुड़ की बात निकली है तो एक श्रोता लिखते हैं, कह दूं कि दोपहर के भोजन के साथ गुड़ जरूर लेता हूं, भोजन के पूरा होने के बाद गुड़ के साथ एक रोटी खा लेता हूं, और भोजन के अंत में गुड़ खाने से पाचन क्रिया आसानी से हो जाती है,
0: क्योंकि गुड़ ही गुड़ है।
1: गुड़ ही गुड़ है।
0: और आगे एक श्रोता लिखते हैं कि हम भी गुड़ और आटे के मालपुए खाने हैं, और आपकी बातें सुनकर हमें भी लग रहा है कि हम इसे जरूर बनाएंगे।
1: वहीं एक श्रोता लिख रहे हैं कि अब सर्दियां आने वाली हैं और गुड़ की तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में ये बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकता है।
0: तो भाई आप जरूर गुड़ के व्यंजन का मजा लीजिए, लेकिन कार्यक्रम का समय क्योंकि पूरा हो चला है तो हमें जाने की इजाजत भी दे दीजिए।
1: बिल्कुल। तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
0: चंचल वर्मा का
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आप सुनने वाले हैं उन्हें जिनकी फिल्म हनुमान अंश इन दिनों हमारे मन को छू रही है, खास तौर से इसके कुछ गीत जैसे कि ये
1: हो। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई,
0: और ये गीत तो हमारे दिल में घर ही कर चुका है।
1: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
0: तो आज हनुमान अंश फिल्म की शूटिंग और सृजन से जुड़ी बातें हमसे साझा करने आए हैं निर्देशक विशाल चतुर्वेदी। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता
2: सिंह।
0: आइए सुनते हैं इस दिलचस्प बातचीत की पहली कड़ी।
3: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक ऐसे लेखक निर्देशक की आमद है जो इन दिनों बहुत चर्चा में है। ये है युवा लेखक निर्देशक और आजकल इनके नाम के दीवाने हो रहे हैं लोग, वो हैं जाने माने निर्देशक और लेखक विशाल चतुर्वेदी जी। उनकी फिल्म बहुत हिट हुई है। विशाल जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
4: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए ममता जी।
3: विशाल जी, सबसे पहले तो बधाई लीजिए अपनी फिल्म की हनुमान अंश। हमने भी देखी और समूह के साथ देखी, बहुत अच्छी लगी, तो बहुत बहुत बधाई।
4: धन्यवाद।
3: और अब हमें बताइए कि ये हनुमान अंश की कहानी ने कैसे आपके दिल में दस्तक दी, कैसे आपके मन में विचार आया?
4: तो एक तो हनुमान अंश टाइटल है और दूसरा हनुमान अंश की जो कहानी है वो श्री नीलकंठ बाबा महाराज जी के बारे में है, जो भारत के पिछले सदी के आई थिंक सबसे रिवर्ड संत आज की डेट में कहे जा सकते हैं। साईं बाबा भी थे और इसके अलावा बहुत सारे श्री अरविंदो, ऐसे बहुत सारे संत हुए हैं जिसमें श्री नीमकोरी बाबा की जो कहानी है वो मुझे बहुत खास तौर पे इंटरेस्ट इसलिए करती है क्योंकि बहुत सादगी से भरी हुई है और किसी तरह का कोई आडंबर उनके जीवन में था नहीं
3: जी।
4: इसके अलावा वो मतलब हर तरह की चमत्कारों से वो हरदम भागते रहे और किसी एक स्थान पर रुक के उन्होंने किसी तरह का एक अपना एक साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश नहीं की। उनका उद्देश्य सिर्फ जगह जगह पे हनुमान जी के मंदिर बनाना और लोगों को भूखों को भोजन, भक्तों को प्रसाद, ये उनका टोटल आइडिया था। और भी उनकी कुछ सीख थी जो जीवन में देते थे पर वो आध्यात्मिक सीख होंगे, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में, एक मानव के रूप में मुझे वो बहुत ज्यादा जैसे बोलते हैं इंटरेस्ट करते हैं। प्लस उनकी चेहरे पे जो एक अजीब सी कोई ऐसा अट्रैक्शन है कि हर व्यक्ति आभा है, कुछ तो है ऐसा जो कि हर व्यक्ति उनको देख के ना देखते ही रह जाता है, तो ये भी एक चीज थी। इसलिए मुझे लगा कि ये होना चाहिए। पर मैं खुद से उनको फॉलो करता हूँ कुछ पिछले 20 साल से, और जब मैं हल्द्वानी में पोस्टेड था, पहली पोस्टिंग मेरी हल्द्वानी में थी, वहां से एक मेरे साथ भी कुछ ऐसा इवेंट हो गया था जिसकी वजह से मैं नया पर्सपेक्टिव मिला लाइफ को लेकर कि ऐसा भी हो सकता है। तो इस वजह से मैं उनकी कहानी बहुत समय से फॉलो कर रहा था। हनुमान अंश टाइटल मुझे नीप करोरी गांव है उत्तर प्रदेश में जहां पे उन्होंने साधना अर्ली एज में की, वो अपने फिल्म में दिखा
3: हुआ।
4: तो वहां पे जब मैं गया था रिसर्च के लिए तो वहां के लोग उनको आंशिक हनुमान और आंशिक अवतार हनुमान का बोलते थे, हनुमान जी का बोलते थे, जिस वजह से मुझे वो टाइटल बहुत अच्छा लगा और मैं उनके नाम से फिल्म नहीं बनाना चाहता था। पहले दिन से क्लियर था कि मुझे उनके नाम से फिल्म नहीं बनानी क्योंकि वो इतने पॉपुलर हैं कि वो ऐसा कहीं से प्रतीत ना होने लगे कि मैं उनके नाम पे राइड कर रहा हूँ। और प्रतीत होने से ज्यादा खुद से स्वयं से भी अंदर से भी वो इच्छा होती है ना कि आप एक कॉन्सेप्ट को दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ना कि किसी तरह की बायोपिक पे आप राइड करके कि भाई बड़ा व्यक्ति है उसकी बायोपिक बनाने मिल गई तो अब ये अच्छा उसमें नंबर्स आएंगे, यू विल ऑलवेज गेट आई मीन अ लॉट ऑफ, आपको बहुत तालियां मिलेंगी, अप्रिशिएशन मिलेगा। इंस्टेड ऑफ दैट क्या हम समाज को क्या दे रहे हैं कॉन्सेप्ट लेवल पे, आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट के लेवल पे, तो ये आई थिंक उद्देश्य था। इसलिए हनुमान अंश और श्री नीमकरोली बाबा, दिस इज द रीजन एंड दिस इज हाउ उनकी आमद हुई।
3: तो नीमकरोली बाबा

0: को एक भक्ति भाव से लोग देखते हैं और कुछ चमत्कार के रूप में भी देखते हैं, भले ही वो चमत्कार न करते हो, और रहस्य के रूप में भी। तो ये उनके पूरे व्यक्तित्व को फिल्म में आपने उतारने की कोशिश की है, तो किस तरह की चुनौतियां आई, कौन सा भाव पक्ष आप ज्यादा लाना चाहते थे और आपको लगा कि ये सही हुआ?
1: मुझे लगता है कि उनकी मैंने एक मानवीय कहानी बोलने का ज्यादा प्रयास किया है, क्योंकि वो स्वयं चमत्कारों से बचते थे, तो हम भी चमत्कारों से फिल्म में बचे हैं।
0: जी
1: लीलाएं होती हैं जब आपके कोई कोई संत महात्मा आपके जीवन को देख लेता है, वो अकाल जो बोलते हैं ना कि वो उनको उनको त्रिकाल दर्शी होते हैं, वो
0: जी
1: समय को देख सकते हैं,
0: जी
1: आपके समय को देख
0: त्रिकालदर्शी
1: सकते
0: जिसको
1: हैं,
0: बोलते हैं।
1: आपके पास्ट को भी देख सकते हैं, आपके फ्यूचर को देख सकते हैं, तो वो आपको आपके अंदर एक ऐसा छोटा सा चेंज लेके आते हैं जो ऑन अ ट्रेजेक्ट्री लेवल, अगर वो आज उन्होंने 0.5% का अगर उन्होंने एंगल चेंज किया आपकी लाइफ का, डायरेक्शन रीडायरेक्ट किया आपको, तो इन द कोर्स ऑफ टाइम 10 ईयर्स और 20 ईयर्स कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। लाइक अब मेरा अपना स्वयं का एक वो है कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहां पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।

0: ट्रेजेक्टरी लेवल, अगर वो आज उन्होंने 0.5% का अगर उन्होंने एंगल चेंज किया आपकी लाइफ का, डायरेक्शन रीडायरेक्ट किया आपको, तो इन द कोर्स ऑफ टाइम 10 ईयर्स और 20 ईयर्स कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। लाइक अब मेरा अपना स्वयं का एक वो है कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहां पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है। और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय बाय हिम 20 इयर्स बैक। तो इसको लीला बोलते हैं, उसको चमत्कार नहीं बोल सकता मैं। चमत्कार तो कोई जादूगर भी कर सकता है, वो होते ना कि हवा में ऐसे कुछ करते हैं, कुछ ले आते हैं, तो चमत्कार ही व्यक्ति लोग उनके उनको चमत्कारी बोलते हैं पर वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उन्होंने हरदम बोला कि हनुमान जी ने किया होगा, आपका राम जी कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, ऊपर वाली कृपा होगी, तो इस तरह से। तो मैं मानवीय उनके साइड को ज्यादा तवज्जो देने का प्रयत्न मैंने किया
1: जी। ये फिल्म में आपने दर्शाया भी है जब वो क्रांतिकारी अंदर कमरे में है और वो बेल बजाते हैं तो पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला कि मुझे भूख लगी है, तो ये क्लियर है कि जैसे वो चेहरे के भाव पढ़ लेते हैं या इंट्यूशन हुआ है, इस बात को आपने दर्शाया भी है, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आज का जो युग है इसमें जरूरी है कि चमत्कार से दूर जाया जाए। और आपने बताया कि, और हम सभी जानते हैं कि आपने मेडिकल की पढ़ाई की, MBBS पढ़ रहे थे और अचानक फिल्मों की ओर रुख कर लिया, कैसे ये संभव हुआ, कहाँ से आपके मन में ये बदलाव आया?
0: मुझे लगता है कि लखनऊ, जब मैं रहने वाला बुंदेलखंड का हूँ, वहीं पढ़ाई पला बड़ा भी वहीं पे हूँ और मैं पढ़ाई भी वहीं से की है। जालौन जिले में एक छोटी सी जगह है कोंच, वहाँ पे मैंने अपनी 10+2 तक पढ़ाई की, उसके बाद एक साल ग्वालियर था, वहाँ से लखनऊ आ गए। और लखनऊ में जो एक जैसे बोलते हैं वहाँ की जो सभ्यता है, वहाँ की जो अपनी अपनी तहजीब है
1: जी।
0: वो कहीं ना कहीं मैंने उसको इम्बाइब करना शुरू किया। तो पहले तो भाषा सुधरी वहाँ जाके, एक ठेठ बुंदेलखंडी और खड़ी हिंदी बोलने वाला व्यक्ति, एक थोड़ी नफासत आ जाती है, एक आपकी जबान में थोड़ा उर्दू आ जाती है। तो पोइट्री वहीं से फूटी, वहीं से मैंने म्यूजिक में इंटरेस्ट मेरा आया। मैं जिस गली में रहता था वहां पे प्रताप नारायण मिश्र जी जो बड़े साहित्यकार हैं उनकी हवेली जस्ट घर के सामने थी, छन्नूलाल जी मिश्रा और ये सब लोग जो है ना वो गली का ही पार्ट थे, तो उसमें बहुत सारा इन्फ्लुएंस हुआ। फिर मैं भातखंडे जाना शुरू किया, फिर मैंने भातखंडे में कुछ एक साल विशारद का प्रथम वर्ष भी किया, मतलब संगीत में गायकी में। और वो एक साल ने मुझे काफी हद तक जो है ना परिवर्तित कर दिया, एक मेरा जो एक क्रिएटिव साइड होगा जो मुझे पता नहीं था वो सडनली स्फुटित हो गया। और उस वजह से मुझे लगता है कि लखनऊ हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय लाइफ। तो बेसिकली वो मेडिकल का सिलेक्शन होने से पहले ये सब मेरे अंदर इम्बाइब हो गया था। तो तैयारी करता था शाम को 6 बजे से, वहाँ की क्लास होती थी तो शाम को 6 बजे तक सब फिनिश रहता था, तो वहीं से अपने कोचिंग से लौटता था मैं और 1 घंटे की वो क्लास करके घर आता था। और उसी बीच में आगे कहीं प्ले हुआ कोई तो देख लिया, या कुछ ऐसा कार्यक्रम चलता रहता है, अमरनाथ बलि नाम का एक वहाँ पे एक प्रेक्षागृह है, तो वहाँ पे प्रेक्षागृह में कुछ ना कुछ चलता ही रहता था, तो वो एक रूटीन बन गया। और फिर वो सिलेक्शन होने के बाद में मैं नहीं चाहता था कि मैं MBBS करने जाऊँ, तब तक मेरा काफी इंटरेस्ट चला गया था इसमें। तो मेरे माता जी ने मुझे बोला कि तुम ये कर लो, उसके बाद तुम्हें जो करना हो तो कर लेना। एंड मेरा जब मैं गया, मुझे कॉलेज जो मिला वो गोरखपुर था, तो गोरखपुर का थोड़ा कला वगैरह से थोड़ा सा कम लेना देना है, ऐसा नहीं कि नहीं है, और हमारा कॉलेज भी बिल्कुल मेडिकल कॉलेज
1: ग्रामीण परिवेश है, बिल्कुल आंचलिक
0: जी, और शहर से बाहर भी है, तो वो करीबन 7-8 किलोमीटर दूर था। तो शहर जाने के लिए फिल्म देखने के लिए जाते थे हम लोग बस, बाकी वो हमारा जो 12-15-50-40-50 एकड़ की जो कॉलेज कैंपस था वो वही दुनिया थी हमारी
1: जी।
0: तो उसके अंदर की जो खैर कहने का मतलब ये है कि MBBS किया तो उस बीच में जितनी भी क्रिएटिव परसुइट्स थी उनको फॉलो भी किया वहां पे, बट इवेंचुअलिटी में अब होता ये कि आप किसी चीज के साथ में बहुत समय तक रहने लगे तो आपको वो भी अच्छा लगने लगता है। तो मैं लास्ट फाइनल प्रोफेशनल तक मैं सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ता था
1: जी, जी।
0: फाइनल प्रोफेशनल में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे सडनली मेडिसिन अच्छी लगने लगी, एज ए वे पीपल जब वो अच्छे हो जाते हैं, जब वो उनके अंदर इम्प्रूवमेंट होता है, प्लस आप जो मानवीय शरीर है उसको आप बहुत डिटेल में देख रहे हो और कैसे रिएक्ट करता है ऑल ऑफ दैट, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया
1: जी।
0: तो फिर मैंने कहा कि अब जॉब भी करते हैं, और पहला जॉब इसीलिए हल्द्वानी में, पिथौरागढ़ में था एक्चुअली, कुछ महीनों के बाद मैंने वो छोड़ के हल्द्वानी में आ गया था मैं, और वहां से ये नई ट्रेजेक्ट्री शुरू हुई जिसे हनुमान अंश की यात्रा जिसे बोलेंगे, वहां से शुरू हुई जी।
1: तो अब यहाँ पर आपने बहुत सारा जिक्र किया, गाने का भी जिक्र किया, मतलब कि ऐसा लगा कि आप गाते भी हैं, और हनुमान अंश में आपकी आवाज में एक गाना है जो काफी प्रचलित भी है और लोग पसंद कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना
0: आप जो कहेंगे वो सारे गाने मुझे बहुत प्रिय हैं, हृदय में जिनकी सितारा

0: मैंने गाना गाया है वो भी बहुत क्लोज टू माई हार्ट है, और वो बहुत ही कमाल की बात है कि उसको मैंने कंपोज नहीं किया, वो अचानक से मेरे दिमाग कहीं से उतर आया हूँ।
1: जी,
0: और वो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपनी फिल्म में अपने म्यूजिक को ना इंक्लूड करूँ, मैं आया तो म्यूजिक डायरेक्टर बनने ही था सबसे पहले
1: जी
0: मुंबई
1: जी
0: में, और विशाल भारद्वाज मेरे लिए बहुत, जिसे बोलते हैं ना कि वो बहुत ही मेरे लिए आइडियल थे।
1: जी
0: लेकिन विशाल जी को मैंने बहुत ज्यादा उनकी फिल्म जो है ना वो मकबूल को मैंने 27-28 बार देखा, मतलब
1: ओ
0: लिटरली
1: बाप रे।
0: लिटरली
1: हाँ
0: उनकी वो जो सीडी थी मेरे पास में
1: जी,
0: वो घिस दिया था, मतलब ऐसा हो गया था कि स्क्रैच आ गए
1: अच्छा
0: थे उसमें, इतना देखा मैंने मकबूल
1: क्या
0: को।
1: बात है।
0: तो कहने का मतलब ये कि होता ये है कि आप जब आते हो कुछ करने के लिए फिर आपको समझ में आता है कि नहीं आपका अल्टीमेट गोल ये है, फिर आप ये क्यों कर रहे हो। कोशिश मैंने बहुत की कि अपने आप को अवे रखूं म्यूजिक से, क्योंकि वो मेरे लिए मेरी अपनी आत्म शांति के लिए मैं म्यूजिक करता हूँ। मेरा सुबह का रूटीन अभी पिछले 1 साल से तो बिगड़ गया, लेकिन सुबह का रूटीन मेरा एक हनुमान चालीसा जो मैं गाता हूँ अपनी खुद से, मैंने कंपोज की
1: जी
0: थी
1: जी
0: वो मैं अपने लिए गाता हूँ, उसको रिलीज ही नहीं किया मैंने, इट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई लोगों को बहुत सारों के पास।
1: जी
0: तो हृदय में जिनके सीताराम आई से कि इज समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बट यू स्पेसिफिकली आस्क मी एनी ऑफ द सॉन्ग, आई लव ऑल द सॉन्ग्स, आई कैन सिंग एनी वन ऑफ इट, आई वोंट
1: जी
0: माइंड।
1: लेकिन मैंने आपकी आवाज के गाने का जिक्र इसलिए किया कि वो गाना तो हम सुनवाएंगे, लेकिन आपकी आवाज में यहाँ पर हम चाहते हैं कि श्रोताओं को भी सुनवा दें
0: चलिए तो मैं
1: आप।
0: पहले हृदय में जिनके सीताराम ही गा
1: जी
0: देता हूँ
1: एक लाइन सुना दीजिए,
0: जी,
1: एक
0: एक
1: दो
0: ही लाइन
1: लाइन।
0: है उसमें, दूसरा लाइन है भी नहीं
1: जी
0: हृदय।

0: क्या बात है, एक साधक की मुद्रा में आप आ गए थे और वो ऐसा लग रहा था कि कहीं आपने जैसे साधना की हो बैठ के।
1: जी।
0: तो यहाँ पूरी फिल्म में हनुमान अंश में हनुमान चालीसा को कथा के रूप में कहीं कहीं पिरोया है आपने, तो ये कहाँ से आपके मन में विचार आया? कुछ पहले से सोच रखा था या फिल्म बनते समय?
1: तो एक तो वो इवेंट जो है वो रियल इवेंट है
0: जी,
1: जो फिल्म में आपने देखा है। लेकिन मैं 2021 में जब कोविड बहुत पीक पे था और मेरे बहुत परिवार के और मेरे दोस्तों के, मेरे मित्रों के फैमिली मेंबर्स एक एक करके जा रहे थे, तो मेरे फर्स्ट कजिन, मेरे लोकल गार्जियन थे कॉलेज में, वो ऐसे करते करते मेरे मामा जी, मेरे बेस्ट फ्रेंड रघुवेंद्र सिंह है, उनकी माता जी, ऐसे बहुत सारे लोग कुछ 5-7 दिन के अंदर ही बहुत सारे लोग चले गए। और वो एक एज ए डॉक्टर मुझे जो है ना, मैं घर पे बैठा था, मैं क्योंकि मेडिसिन प्रैक्टिस छोड़ के बहुत साल हो गया है और बाकी सब तो कुछ कर नहीं रहे हैं। अब मैं एज अ मेडिकल मतलब डॉक्टर आई शुड डू समथिंग, मुझे कुछ करना चाहिए था और मेरे पास कोई सच कोई डायरेक्ट कनेक्ट बचा नहीं था, तो जितना हेल्प कर पा रहा था मैं कर रहा था। लेकिन मुझे ऐसा एक क्लब हाउस नाम की एप्लीकेशन थी जहाँ पे बहुत सारे दोस्त मिलना शुरू हो गए थे, क्योंकि वो एक अलग चीज बन गई थी जहाँ पे सब लोग वॉइस में बात कर सकते हैं। तो वहाँ पे मुझे ऐसा दिल में ऐसा ख्याल आया कि जितने लोगों को शांति चाहिए है वो शायद हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो शायद होप देगी लोगों को। तो हमने हनुमान चालीसा नाम का एक क्लब चालू किया 2021 में, अप्रैल का महीना था। पहले दिन ही लोग 8 घंटे तक उसमें हनुमान चालीसा होते हैं, लोग आईसीयू में लेटे हुए हैं और वो हमारे क्लब को सुन रहे हैं। पीपल रिकवर्ड फ्रॉम देयर आईसीयूज, जो कि आईसीयू से बहुत कम लोग निकलते थे उस वक्त, तो आईसीयू से बाहर निकले फिर वो हमारे मॉडरेटर्स बन गए। तो वो क्लब आज भी वो क्लब चला रहे हैं
0: जी,
1: तो एक 12,000 से ऊपर उसके सब्सक्राइबर हो गए।

0: लोग अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आते थे और वो हनुमान चालीसा, तो ऐसे में मेरा एज अ फाउंडर ऑफ दैट क्लब मेरा रूटीन बन गया कि 2-2.5 घंटे तो हनुमान चालीसा को डिकोड करना शुरू किया मैंने।
1: जी जी जी।
0: उसके पहले तो पढ़ना होता था, फिर हनुमान चालीसा को डिकोड करना, वो मेरी एक तरह से मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग वर्ल्ड बन गया। तो कहें तो हनुमान अंश का कोर जो है वो हनुमान चालीसा है। अगर आप वो, उसमें भी एक डायलॉग है फिल्म के अंदर जहाँ पे बच्चा पूछते हैं महान जी उससे के, महान जी पूछते हैं कि आपका जो है क्यों हनुमान जी का ही पाठ क्यों है, ओके तो कहते हैं क्योंकि हनुमान चालीसा में लिखा है। तो क्या तुम्हारे भजन राम जी को पावे, तो वो कहते हैं किसी से प्रेम नहीं है, तो कहते हैं कि नहीं माँ से था, था क्यों, बोले माँ राम जी के पास चली गई। और करना क्या चाहते हो, राम जी के पास पहुंचना है क्योंकि मुझे अपनी अम्मा के पास पहुंचना है। तो ये पूरी फिल्म को हनुमान चालीसा में क्या लिखा है और एक बच्चे की भावना अपने माँ के प्रति क्या है और वो कितना अकेला अपने को महसूस कर रहा होगा कि वो जो है ना अपनी माँ से इतना प्रेम था कि वो उन तक पहुंचना चाहता है क्योंकि किसी ने बोल दिया कि राम जी के पास चली गई, तो उसने पूरा अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया कि मुझे राम जी तक पहुंचना है क्योंकि मुझे अपनी अम्मा तक पहुंचना है। एंड प्रॉब्ली दिस इज वन ऑफ दी मोस्ट, जिसे बोलते हैं ना कि सबसे ज्यादा जो लाइन लोगों को पसंद आती है, स्पेशली मदर्स हैं, बच्चे हैं, बच्चे इमीडिएटली कनेक्ट हो जाते हैं उस लाइन से। वो हुआ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आई सॉर्ट ऑफ डिकोडेड हनुमान चालीसा फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। अभी भी मुझे बहुत मजा आता है। अब अगर आप मुझसे आप बात करेंगे तो आई विल लव टू चैट अबाउट हनुमान चालीसा फॉर आवर्स।
1: अभी सुनाइए थोड़ा सा तो सुना सकते हैं। देखिए वहाँ एक बात मैं अपनी ओर से जोड़ना चाहती हूँ, वो जो दृश्य है जिसका आपने जिक्र किया सचमुच बहुत मार्मिक दृश्य है कि एक पिता अपनी दूसरी शादी करके आ रहे हैं और बच्चा बोलता है कि मुझे राम जी के पास जाना है। तो ये बहुत मार्मिक था और हम सबको यहाँ पर इमोशनल भी किया आपने, मतलब देखा कि लोग रो रहे हैं वहाँ पर। और इस पूरी फिल्म में कई जगह ऐसे लगता है कि हाँ हम कहीं, आपने जो साधक के रूप में दिखाया वो साधना में हम सब लीन हो रहे हैं, कई ऐसे दृश्य आए।
0: जी, जी।
1: तो यहाँ फिर से वापस लौटते हैं हनुमान चालीसा पर, तो वो अगर आप गाते हैं तो
0: नहीं
1: तो
0: हनुमान चालीसा मैं गा दूंगा, पर मैं हनुमान चालीसा को जो डिकोड करता हूँ मैं हनुमान चालीसा को, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, आई विल ऑल्सो सिंग कपल ऑफ लाइंस। मुझे लगता है कि हनुमान चालीसा जो है ना बहुत ही मल्टीपल कॉस्मिक कॉन्सेप्ट हैं, उनका संकलन है। और आपके जीवन में आप कैसे आध्यात्म की तरफ जब बढ़ते हो और आपको जब अल्टीमेट को जो आप पाना चाहते हो, भगवत प्राप्ति जो आप करना चाहते हो, तो उसका राह वो आपकी सुगम करती है, आपके जीवन को भी बहुत सॉर्ट करती है। जैसा कि श्री निपकोले बाबा भी बोलते थे कि वो कहते थे राम नाम का जप करते रहना, राम नाम लिखते रहना, और हनुमान जी की भक्ति के लिए हरदम बोलते थे। आप भक्त क्या होता है वो आप हनुमान जी से सीख सकते हो कि वो अपने ईष्ट से ज्यादा बलशाली है, पर वो सरेंडर उनको ही करते हैं,
1: इष्ट
0: को ही करते हैं। भक्ति इसको बोलते हैं कि आप किसी भी, तो ये एक तो चीज है और प्लस जो है ना उसमें तीन और कोड्स हैं कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिन पैसारे। तो हनुमान जी की भक्ति के बिना, हनुमान जी को समझे बिना, उनकी आज्ञा के बिना आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, दैट इज वन। अनदर लाइन इज दैट राम रसायन तुमरे पासा, सो यू हैव द कॉस्मिक कोड और द कोड द फॉर्मूला टू रीच राम, सदा रहो रघुपति के दासा। तीसरी लाइन है तुमरे भजन राम जी को पावे, एज एन अगर आप हनुमान जी को भजते हो या आप हनुमान चालीसा करते हो तो आप भगवान राम को की प्राप्ति आप कर सकते हो। ये तीन लाइनों के अलावा पवन तनय संकट मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय भसम, हृदय भसम स्वरूप का मतलब क्या है कि आपको उनको दिल में, आपको दिमाग में नहीं रखना है, आपको हृदय में रखना है, इसलिए वो हृदय में जिनके सीताराम जैसा लाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट अष्ट सिद्धियां अपने दिख जाता, आठ सिद्धियां आप ही दे सकते हैं। और यही प्रॉब्ली नीम गौरी बाबा के उनकी लाइफ में भी आप देखें, जो सिद्धियां जिनके प्रचलित सिद्धियां हैं वो कहीं ना कहीं उनको हनुमत भक्ति से आई हैं, क्योंकि हनुमत भक्ति जो है ना कलयुग में शायद वही एक भक्ति है जो आपको सुगम तरीके से, क्यों, क्योंकि अगली लाइन उसकी है अष्ट दिन असबर दिन ऐसा वर सीता दीन दीन जानकी माता, तो जो जगत जननी माता सीता है उन्होंने आपको एक वरदान दिया कि आप ये सिद्धियां जो आपके पास ऑलरेडी है वो आप किसी को भी दे सकते हैं। ऐसा ही एक एक भगवान राम ने भी उनको वरदान दिया कि सहस बदन तुम रोज जसगावे इसका श्रीपति कंठ लगावे, जब लाए सजीवन लखन जी आए, जब वो संजीवनी लेके आए तो उन्होंने ऐसा वरदान दे दिया सहस बदन तुम रोज जसगावे, इसलिए आज भी भगवान राम से भी ज्यादा पॉपुलर हनुमान जी है
1: जी।
0: क्योंकि हनुमान जी को सब जानते हैं, तो आपको साउथ अमेरिका चले जाएंगे आपको वहां पे जो टेम्पल्स हैं वो पेरू वगैरह में, वहां पे भी आपको हनुमान जी की मूर्ति मिल जाती है जो कि 5,000-5,000 साल पुराने टेम्पल्स हैं
1: जी, बिल्कुल।
0: ही वाज सो पॉपुलर अक्रॉस द वर्ल्ड एंड स्टिल इट्स ही इज पॉपुलर कि आपका जो अमेरिका का राष्ट्रपति जो पिछले राष्ट्रपति थे वो हनुमान जी की मूर्ति जेब में रखते थे।

0: बराक ओबामा
1: बिल्कुल,
0: तो अपने
1: हनुमान चालीसा लोग अपने पास रखते हैं,
0: पास रखते
1: सिरहाने
0: हैं,
1: रख के
0: रख के
1: सोते हैं,
0: सोते हैं।
1: पर्स में
0: जी
1: रखते हैं,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: डर से निजात पाने के
0: करेक्ट
1: लिए
0: जी
1: कहा जाता है ना, हम सब भी वो करते हैं, डर लगता है तो
0: डर लगता है तो
1: अंधेरे
0: हनुमान चालीसा पढ़ना
1: हनुमान
0: जरूर
1: चालीसा
0: लगता
1: पढ़ते
0: है।
1: हैं,
0: जी
1: अंधेरे कमरे में पार करना है तो
0: करेक्ट,
1: हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जाना है।
0: वो फिल्म में वो सीन जो है ना, वो डेडिकेटेड टू दैट लाइन है कि आप पढ़ते तो हनुमान चालीसा इसलिए हो क्योंकि आपको भूत पिशाच निकट नहीं आ रहे, उस लाइन के लिए पढ़ते हो आप, लेकिन वो लाइन तो बीच में आती है तो आपको पढ़नी तो पूरी है।
1: जी,
0: तो मन से
1: शुरुआत
0: पढ़ना बहुत आवश्यक है, इंटरनलाइज करना, और आपको जिस भी आप देवता, जिस भी भगवान को आप ईष्ट हैं आपके, उनको
1: जी।
0: अंदर से मन से उनका ध्यान करना, मन क्रम वचन ध्यान झुलावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन
1: जी
0: ध्यान झुलावे।
1: हाँ,
0: जी
1: बिल्कुल सकारात्मक भाव पैदा होता है। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का, कौन सा गाना
0: मैं भी
1: सुनें?
0: आपको हनुमान चालीसा ड्यू है, मैं आपको दो कम से कम लाइनें सुनाता हूँ।
1: जी जी प्लीज सुनाइए।
0: जी जी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, जय सिया राम जय सिया राम।

जग बंदन जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम।

0: अभी मतलब मैं तो गाता रहूंगा तो 15 मिनट
1: बात
0: इसी में निकल जाएंगे, बट
1: अब
0: ठीक है
1: गाने की बात, चलिए
0: जी
1: हनुमान चालीसा आप गा ही रहे तो हम आपके पीछे की ओर बचपन की ओर ले चलते हैं, बचपन की गलियारों में।
0: जी
1: वहाँ आपने जिक्र भी किया कि आप विशारद करना चाहते थे,
0: जी
1: पंडित चन्नूलाल मिश्र का जिक्र किया,
0: जी
1: तो क्या बचपन में आपने सोचा था कि आप गायकी की दुनिया में आएंगे, या फिर सोचा था उस समय क्या सपना था आपका?
0: मुझे लगता है कि बचपन में सपने तो थे पायलट बनने के, फिर लग गया चश्मा, फिर
1: ओ
0: पता चला कि वो तो नहीं कर सकते, फिर ऐसा लगा कि आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए। तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो
1: हाँ जी,
0: सुदूर जो जगह हैं वहाँ पे
1: डॉक्टर इंजीनियर
0: डॉक्टर इंजीनियर आईएसपीसीएस,
1: आईएसपीसीएस।
0: तो मेरा थोड़ा पायलट पायलट सोचता था, मैं थोड़ा आगे की सोचता था, लेकिन वो शायद एनीवेज। तो हुआ ये कि लखनऊ आने से मैंने डिस्कवर किया कि आई कैन सिंग, उसके पहले तो मुझे पता ही नहीं था। 17 साल तक की उम्र तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं गा सकता हूँ या मैं पोइट्री लिख सकता हूँ, ये भी नहीं मुझे पता था। तो लखनऊ आके वो परस्यूट डेवलप फिर से वापस स्फुटित हुए, अंकुरित हुए, या मुझे आई डिस्कवर्ड देम, सेल्फ डिस्कवरी हुई मेरी, हनुमान जी की तरह से उनको अपनी शक्तियां पता चली वैसे मुझे, एंड दैट टुक मी। वरना बचपन चंबल में बीता, तो वहां पे बुंदेलखंड में, तो जहाँ पे ये आपने जो बैंडिट क्वीन देख रहे हैं, पान सिंह तोमर देख रहे हैं, वो एक और फिल्म थी टिशू की, एक और टिशू के बाद में अभिषेक चौबे की एक फिल्म आई थी फॉरगॉट द नेम, सुशांत सिंह राजपूत की थी, वो सारी फिल्में, वो सारी दुनिया जो है ना बुंदेलखंड है, वो है जो हमने जिया है देखा है। से कॉन्ट्रास्टिंग आई रीच्ड लखनऊ, और लखनऊ में जो जीवन जैसे बोलते हैं ना कि परिवर्तन हुआ, तो वहां पे मैंने विशारद के लिए एडमिशन के लिए मैंने टेस्ट दिया जिसमें 30 सीटें थी, तो 30वां नंबर रैंक मेरा आया।
1: अच्छा।
0: और वो तेज सिंह टाक जी वहाँ पे मेरे टीचर थे, और उन्होंने जो भी सिखाया वो इतना काम भविष्य में आया कि मतलब एक ही साल किया था मैंने, 5 साल में से एक ही साल करके फिर आई टू गो फॉर द मेडिकल मेडिसिन, तो 4 साल 5 साल वहाँ पे, फिर वो रॉक वॉक गाते थे और पॉप रॉक में दुनिया में चले गए, फिर क्लासिकल भूल गए। क्लासिकल को दोबारा से मैंने पिछले 4 से 5 साल में फिर से दोबारा से आई स्टार्टेड यू नो प्रैक्टिसिंग एंड वर्किंग ऑन इट, एंड आई डू इट प्राइमरली फॉर माई सेल्फ। तो मतलब वो कम्प्लीटली मेरे, उसको कमर्शलाइज करता नहीं हूँ, म्यूजिक को कुछ भी कमर्शलाइज नहीं करता, सो इट्स अ वेरी सोल सेटिस्फाइंग सॉर्ट ऑफ एन इवेंट फॉर मी एवरी डे। लेकिन नेक फॉर म्यूजिक, फाइंडिंग ग्रेट म्यूजिक, रिकॉग्नाइजिंग ग्रेट टैलेंट, म्यूजिकल टैलेंट इज प्रॉब्ली वन आर्ट आई डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ मतलब मल्टीपल ईयर्स, डेकेड साल से। तो अनुभव सिन्हा जी के साथ में मैंने करीबन 3 साल काम किया, उसमें भी ऐसा हुआ कि वो साल भर के बाद उनको पता चला कि मेरा म्यूजिक सेंसिबिलिटीज ऐसी हैं, तो उन्होंने फिर मुझे म्यूजिक भी सारा दे दिया करने के लिए। तो बनारस बीट नाम का उनका एक अपना एक छोटा सा
1: जी, जी,
0: था,
1: बिल्कुल,
0: तो हाँ। बनारस बीट मैं हैंडल करता था,
1: उसी के नाम से उन्होंने अपना का फोन नंबर भी।
0: हाँ जी जी जी तो बनारस बीट जो है मैंने काफी समय तक वो भी चलाया, बहुत सारा म्यूजिक मैं सिलेक्ट करता था उनके लिए, या एटलीस्ट चूज करता था कि सुनिए आपको क्या अच्छा लगता है, एंड दैट्स हाउ प्रॉब्ली आई थिंक द फिल्म बिकेम अ म्यूजिकल, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, एंड आई बिलीव द ग्रेट म्यूजिक ग्रेट साउंड, 45% विजुअल्स होते हैं, 55% जो है ना वो साउंड होता है, और वही आपको सबकॉन्शियस लेवल पे हिट भी करता है, अफेक्ट भी करता है, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द डायलॉग डिलीवरीज, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द डायलॉग संबोधन जो है उसमें भी जो पॉकेटेड इन्फॉर्मेशन होती है अपार्ट फ्रॉम द बैकग्राउंड म्यूजिक एंड द सॉन्ग्स विच वी सिलेक्ट एंड वी गो फॉर। तो मुझे लगता है कि म्यूजिक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरे, मैं सारे फिल्म मेकर्स को ये सजेस्ट करता हूँ, जो हम सडनली गानों से दूर भागने लगे हैं एज एन इंडस्ट्री, कि लिप सिंकिंग करना है, बैकग्राउंड में कहीं कहीं गाने डाल देना है, गानों से पूरा वाइब क्रिएट होता है फिल्म का, 3rd week ऑनवर्ड्स गाने चिपके हैं। अच्छा आप अच्छा है खराब है मुझे पता नहीं, पर पहले 2 वीक तक कोई गाना चला ही नहीं, और वही कारण था कि फिल्म भी डिप करी थी, फिर फिल्म के बारे में भी लोगों ने बात करनी शुरू हुई, फिर गाने भी डिस्कवर होना शुरू हुए 4th week से,
1: और गाने बजने
0: और फिर गाने ऐसे बजने लगे कि फिल्म को उन्होंने उठा दिया।
1: हाँ। और रील बनने लगे,
0: रीले बने लगे, हजारों की संख्या मतलब अनगिनत है, तुम गिन भी नहीं रहे, गिनना बंद कर दिया, जो मिलता है उसको रीशेयर कर देते हैं, वरना तो हाँ निकल ही रहा है, मतलब कॉन्स्टेंट इतना बन रहा है कि हम वी कांट सी, 24 घंटे भी देखेंगे तो नहीं देख पाएंगे,
1: बिल्कुल
0: इतना कॉन्टेंट बन रहा है।
1: तो यहाँ पर गानों का जिक्र चला है और आपकी फिल्म के गाने की रील बन रहे हैं, और ज्यादातर इस गाने

0: पार्वती
1: जी
0: जो है, तो वो सुना दे श्रोताओं को।
1: जी मतलब वैसे साधु तिवारी जी का गाना है, उनसे परमिशन लेके मैं गाता हूँ वैसे, लेकिन चलिए मैं सुनाता हूँ। जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती, समझाने पहुंचे सप्त ऋषि, अरे काय जिद कर रही, अरे काय खुमर रही, अरे काय जिद कर रही, काय खुमर रही, ऐसे वर के लाने, काय जिद कर रही, काय कुमर रही, ऐसे वर के लाने, जाके शीश पे गंगा और गले में डारे फिर रहे सांप, जाके शीश पे गंगा और गले में डारे फिर रहे सांप, इतने सीधे सादे हैं सब कहते भोले नाथ शंभो, शिव शंभो।

0: बम भोले भोले बम भोले।
1: इस गाने के बाद हम आपसे जानना चाहते हैं, अभी आपने बातचीत के दौरान जिक्र किया अनुभव सिन्हा जी का
2: जी।
1: अनुभव सिन्हा जी विविध भारती के स्टूडियो
2: उनसे
1: सौभाग्य मेरा कि उनका भी इंटरव्यू मैंने ही लिया था, बातचीत की थी
2: जी।
1: तो उनसे कुछ निर्देशन की कुछ बारीकियां भी आपको मिली या गानों के बारे में ही?
2: मुझे लगता है कि उनके सानिध्य में काम करना, मैं उनके अंडर तो काम करने का मुझे मौका नहीं मिल पाया
1: जी, जी।
2: उनके सानिध्य में काम किया
1: जी,
2: पर बहुत सारी जो जिस तरह से उनकी वो जिस तरह से इलेवेट करते हैं चीजों को ना सिनेमा, हाँ सिनेमा में इलेवेशन क्या होता है कि आप जब हम फिल्म देखते हैं तो आप जब जिस तरह से हीरो को पोजीशन करते हो, जिस तरह से इलेवेट करते हो, बहुत बारीक बारीक नजर है उनकी, बहुत सुंदर सुंदर, वो भी उनके बहुत कान बहुत तेज है, उनके भी म्यूजिकल तुम बिन उनकी पहली फिल्म भी इतनी बड़ी ह्यूज म्यूजिकल हिट थी
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: और आप चाहे वो रावण का म्यूजिक सुने या मुल्क का, हाँ
1: थप्पड़
2: के गाने, मुल्क के भी गाने बहुत सुंदर थे, पर मुझे लगता है कि रावण के गाने बहुत सुंदर थे और उसके पहले भी जितनी फिल्में उन्होंने की है, मतलब आप चाहे कैश पकड़ लो, फिर उसके पहले एक और फिल्म थी उनकी
1: अनेक भीड़
2: तो ये अभी की फिल्म्स हैं, लेकिन एक वो जो कमर्शियल फिल्म्स बनाते थे उनके म्यूजिक एल्बम, ओ माय गॉड क्या क्या एल्बम्स उन्होंने चूज किए। तो कहीं ना कहीं वो मेरा अनुभव सर का ये बहुत ही, जैसे बोलते ना कि हमारे बहुत सारे विचार, लेकिन हम बहुत, मैं उनका इतना सम्मान है हृदय में, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि वो कभी भी आपके, आप क्या सोचते उस पर इंटरफेयर नहीं करते। और मैं उनके उनके ऑफिस में बैठ के मैंने एक फिल्म लिखी थी जो उनकी पसंद की फिल्म थी, उन्होंने कहा कि इस फिल्म को लिख पूरा, एक शॉर्ट फिल्म सुनाई थी जिसपे उन्होंने कहा कि इसको तो पूरा फिल्म बना के लिखे।
1: अच्छा।
2: फिल्म का नाम था, उस वक्त उसका नाम डीमो था, फिर उसका नाम भसड़ हो गया, कॉमेडी फिल्म थी, एक रात की कहानी, दो दोस्त मिलते हैं और क्या होता है उस रात को, लेकिन उन्होंने उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो प्रॉब्ली उनको हो सकता ना ही पसंद आई हों, पर उन्होंने उसमें मेरे कभी काम में इंटरफेयर नहीं किया। और यही एक सबसे बड़ी फिल्म मेकर की खासियत होती है कि वो आप क्या सोच रहे हो वो आपकी सोच है, मैं क्या सोच रहा हूँ मेरी सोच है, हम दोनों एक सब्जेक्ट को डिबेट कर सकते हैं पर मैं तुम्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि मैं सबसे ज्यादा जो चीज सीखी है उनसे मैंने वो यही सीखी, और मैं इस बात के लिए मतलब सदैव उनको याद करता हूँ और हर बार यही बात बोलता हूँ, और मेरी बात उनसे दो बार ही होती है, और लेकिन तो मतलब मेरा सम्मान उतने ही उनके लिए हृदय में उतने सम्मान है जी।
1: बेहतरीन बातचीत हुई थी और बेहतरीन इंसान। यहाँ पर आपकी फिल्म का हम गाना सुनना चाहते हैं, मतलब उसका जिक्र करना चाहते हैं, मैंने तेरे ही भरोसे
2: जी।
1: ये सुनील लोधी बुंदेलखंड के
2: जी,
1: तो ये कैसे मिले आपको, कहाँ से, क्यों बुंदेलखंडी गाते हैं वो?
2: हाँ तो मैं बुंदेलखंड में पैदा हुआ, जैसे मैंने बताया बुंदेली हाँ। मुझे बहुत पसंद है, अभी भी सोते मेरी पहली फर्स्ट लैंग्वेज भी आप बुंदेली बोल सकते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, फर्स्ट बोली है, क्योंकि बोली है वो तो लैंग्वेज नहीं है, तो बुंदेली मुझे चूंकि, तो मैं क्या हो रहा था पिछले 2-3 साल से ना, एक बुंदेली दुनिया नाम का एक चैनल था
1: जी,
2: तो मैं बहुत सारे ऐसे बुंदेली गीतों को के लोग जो बनाते तो उनको फॉलो कर लेता था।
1: अच्छा।
2: तो उसमें देखा कि मैंने ये लड़का जो है ना ट्रेन में गाता है और उसका
1: नेत्रहीन है
2: वो है। और वो ट्रेन में गाता है या ट्रेन में ट्रेवल करते, किसी ने वीडियो बनाया तो इसलिए वो फेमस हो गया कि ट्रेन में लड़का गाता है। अच्छा, मैं काफी दिन फॉलो कर रहा था, एक दिन मुझे दिखाई दिया कि वो इंस्टाग्राम पे उसे कोई पिक्चर दी, वर्सोवा बीच पे है वो। मैंने कहा ये कहां से वो आ गया, एंड मैं उसको अप्रोच करने के लिए बहुत दिन से सोच रहा था कि इसको किसी को बोलता हूँ कि इसको अप्रोच करके बुलाऊं मुंबई, पर मुंबई बुलाने के लिए संसाधन चाहिए होते हैं और हमारी बहुत छोटी फिल्म है, हम ऐसा नहीं है फ्लाइट टिकट देंगे भाई आ जा तू, बट चूंकि ये मौका था कि वहां पे था, तो मैंने उसको रात में ही 11:30 बजे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजा, और हैपेंस सो दैट इन हाफ एन आवर ही वाज इन द स्टूडियो, इन आवर ऑफिस एंड स्टूडियो। फिर हमने उसका सेटल किया कि भाई कब जा रहा है वो, क्या है कैसा, तो पता चला कि वो 11 बजे सुबह निकल रहा है 12 बजे, तो उसके पहले हमने एक स्टूडियो बुक किया और सारे जो भी उसके जो गाने थे उसके पास में वो उसने सुने उससे हमने, और ये गाना मैंने तेरे ही भरोसे मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, तो मैंने कहा कि इसको रिकॉर्ड करते हैं, तो उसने अपने ही उस पे तंबूरे पे एक तारे पे अपने उसने रिकॉर्ड किया, एक ही इंस्ट्रूमेंट के साथ में रिकॉर्ड किया, मैंने कुछ इसमें लाभ लगे बट कुछ किया ही नहीं, इट्स जस्ट दैट, और वो लोग बोले थे इसके ऊपर कुछ म्यूजिक नहीं करोगे, इनफैक्ट उसने भी बोला मुझे कि सर आपने इस पे कुछ कराया नहीं, और तो मैंने कहा कि नहीं इस पे कुछ कराने की आवश्यकता नहीं है, ये ऐसे ही वर्क कर रहा है और ऐसे ही वर्क करेगा, क्योंकि स्ट्रेट इट द वॉइस गोज डायरेक्टली टू योर हार्ट, कोई दूसरा कोई माध्यम है ही नहीं, स्ट्रेट टू द हार्ट, कि मैंने तेरे ही भरोसे हनुमानो, बहुत गूढ़ शब्द है उसमें
1: जी जी,
2: सागर में नैया डार दे, कौन उसमें लाइनें हैं कि मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डार दई, अरे काहे की बो नाव बनाई, काहे की पतवार,
1: जी जी बिल्कुल याद है।
2: और

0: जंजीर सागर में नैया डार दे। सो बेसिकली इज अ क्वेस्ट कि दैट मैं सागर में नैया डार दे के मतलब, और हनुमत कौन है खेवन हार, तो पार कौन लगाएगा लेकिन खेवन हार कौन है। देखिए दो अलग अलग चीजें हैं। अब आंसर क्या है, सीता सखी वहां बैठन हारी,
1: जी
0: शक्ति उसमें बैठेगी, रामा पार लगाए वो आपको पार लगाएंगे, लेकिन खेवन हार कौन है। हनुमत खेवन हार सागर में नैया डार दे, मैंने
1: होना
0: तेरे ही
1: चाहिए।
0: भरोसे, आप ही खेवन हार हो, यू विल टेक मी दैट साइड। सो इतनी सिंपलीफाइड एंड इतनी गूढ़ और इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पॉकेटेड एक इतने खूबसूरत अगर गीत में है, तो मैं उसमें क्यों लाग लपेट करूं, क्यों उसमें मैं इंस्ट्रूमेंट डालूं और क्यों उसको भरूं और क्यों उसको ग्रैंड बनाने की कोशिश करूं, वाइल इट इज वर्किंग सो वेल, स्ट्रेट हार्ट टू हार्ट वर्क करता है, इधर से आवाज निकली सीधे दिल में लगती है। दैट्स हाउ इट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन ऑन इंटरनेट, यू कैन सी थाउजेंड एंड थाउजेंड एंड थाउजेंड। मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 15 दिन पहले मैंने देखा था, 2.5 लाख रील्स थी उसकी, पिछले 15 दिन पहले 2.5 लाख रील्स से भी पता नहीं हुआ, अभी देखेंगे तो लगता मिलियन हो गई हूँ या 5 लाख
1: जी
0: के हो गया
1: बिल्कुल, बहुत तेजी से ये चर्चित हो रही फिल्म और गाने हिट
0: गाने।
1: हुए,
0: हाँ
1: गाने लोगों के जुबान पर। बहुत मुश्किल है आज के इस युग में गाने को हिट करना,
0: जी
1: और गाने हिट हो रहे हैं, रीलें बन रही, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर वही गाना हम श्रोताओं को सुनवाते हैं।

0: गाने के बाद हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने सुना है कि आज के इस डिजिटल युग में भी आप कलम से कागज से लिखते हैं और ये पूरी फिल्म आपने कलम और कागज से लिखी है, तो ये क्या मामला है? आपको पसंद नहीं है डिजिटल मतलब लैपटॉप पे टाइपिंग करना, या आप कागज कलम को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्या बात है?
1: हुआ ऐसा कि मैं सारे जीवन में डिजिटली ही लिखते आया हूँ, तो मैं पेन एंड पेपर पे लिखता नहीं था, कभी कभी लिख दिया तो लिख दिया, पर वो ऐसा रहा था कि जब फिल्म हमने अनाउंस कर दी और मैंने जो भी मेरे दिमाग में सीन्स थे उनको उतारने के लिए जब मैं लिखने बैठता था तो मैं ऑब्वियसली द डिजिटल डिवाइसेस आर सो डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑल द टाइम कुछ ना कुछ आ रहा है, या तो कोई कॉल कर रहा है या तो किसी मैसेज कर रहा है, उसको आपको रिप्लाई करना

0: इंस्टाग्राम पे कुछ आ रहा है, तो इट्स इट्स डिस्ट्रैक्टिंग। एंड ऑल्सो आप अगर उसको सर्च करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन भी जाते हो इंटरनेट पे, तो वो भी आपको कहीं से कहीं ले जाता है,
1: दिख जाता है
0: और समय बहुत जाता है उसमें। तो मैं एक दिन तंग आके और गुस्से में मैंने आके सारी डिवाइसेस बाहर निकाल दी।
1: क्या बात है,
0: बहुत मैं सब कमरे से बाहर। तो हमारे ऑफिस में एक छोटा सा स्पेस है जो स्लीपिंग पॉड है, जो उसको हम गुफा भी बोलते हैं कि हम, तो मैं वो गया, वो शट हो जाता है, पूरा पैक हो जाता है, सारी डिवाइसेस बाहर की, पेन पेपर पकड़ा और मैंने लिखना शुरू किया। पहला सीन जैसे क्रैक हुआ, मैं गया अंदर, मैंने लिखना शुरू किया। इन 15 दिन में रिकॉर्ड 15 डेज टाइम में मैंने पूरी स्क्रिप्ट फिनिश कर दी। आपको बिलीव नहीं होगा कि पहला ड्राफ्ट ही है जो मैंने शूट किया है। देयर इज नो चेंज इन द फिल्म, इज स्ट्रेट एक बार में। तो मेरा सजेशन लोगों को यही है कि डिजिटल डिवाइसेस आर सो डिस्ट्रैक्टिव। जब भी आपको लेखन करना है, जैसे आपने भी पेन पेपर पे लिखा है सब,
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: मोबाइल में है, जबकि
0: मोबाइल में आप लिख सकते हो, पर आप जो आपको जैसे बोलते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन से कनेक्ट फील होता है ना आपको, आपका माइंड वो बोलते हैं हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बोलिए जो भी बोलिए, कि आपको कहीं ना कहीं एक लूप है वो। हाथ से जब आप लिख रहे होते हो तो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन से जो निकल रहा है वो हो रहा है, और उसमें किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं है। वो डिवाइस आपके आंख में रोशनी नहीं छोड़ रही है, वो ऊपर से एक मैसेज नहीं आ रहा उसमें, और बीच में से कॉल नहीं आ रही है। ऑल दैट हैपेंस, एंड देयर आर पीपल जो कि सिर्फ जो है ना मोबाइल फोन पे लिख लेते हैं, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं ना वो सैंक्टिटी चली जाती है।
1: बिल्कुल, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन
0: होते रहते हैं।
1: सही कह रहे हैं, और ये बात है, कागज पे लिखा हुआ भले दिमाग में लिखा हुआ, लेकिन कागज रखा है साथ में, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक गाना होना चाहिए, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुना है?
0: मुझे लगता है कि फूलों के रंग से इज माय ऑल टाइम फेवरेट, प्रेम पुजारी का गाना है,
1: साहब का लिखा हुआ, सचिन देव बर्मन संगीतकार।
0: तो
1: सुनते हैं।

0: मैं स्कूल में भी नहीं गया था, तो मैंने हमारी मैं मेरे पेरेंट्स के साथ में, मेरे माता जी पिताजी के साथ में ट्रैवल कर रहा था, एक कालपी से उरई के बीच में, और वहाँ पे रास्ते में एक भवानी मंदिर, भवानी जी का, माता का मंदिर होता है। फर्स्ट मेमोरी मेरी वही है सबसे स्ट्रांग। और अचानक से वो गाड़ी रुक जाती है, बस रुक जाती है, और सब लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि अरे मतलब डकैत डकैत ऐसा नहीं। एंड गाड़ी रुक जाती है, सब सहम जाते हैं, पर मैं बहुत इंटरेस्ट से आगे चला जाता हूँ। लिटरली वो था ग्लास जो होता है उसके पास, मैं बच्चा हूँ मैं। वो मेरी बहुत स्ट्रांग मेमोरी है, जहाँ पे फिर मैं देख रहा हूँ बड़ा सा घोड़ा और उस पर एक छोटी सी महिला,
1: महिला बैठी
0: उसने
1: है।
0: जो है ना पट्टा बांध रखा है, उसके हाथ में बंदूक है। वो बड़ा फैसिनेटिंग था, मतलब फॉर फॉर अ किड, अचानक से इतना कि कोई आया है जिसको, और ऐसी वेशभूषा में किसी को देखा नहीं। तो वो फिर वो दर्शन वर्शन करती हैं, वो भवानी मंदिर में अपने सर झुकाती हैं, और फिर वो चली जाती हैं वहां से। किसी कुछ होता नहीं है, मतलब ऑब्वियसली वो लूट के लिए नहीं आई थी, वो दर्शन करने के लिए आई थी। तो एक वो है, और दूसरा जो मेरे स्कूल के समय, जब मैं स्कूल और कॉलेज जब मैं पढ़ रहा था, कौंच भी जो ना कुंच ऋषि की धरती थी, वो मुझे बहुत लेटर समझ में आया। वहां पे रानी लक्ष्मीबाई जब जब वहां से निकली थी, और वो चोटिल थी, घायल थी, तो कौंच में एक जगह थी जहाँ पे उन्होंने रात गुजारी थी, मलहम वगैरह भी वहीं पे हुई थी उनकी। तो ये सारी चीजें जो थी, और प्लस बुंदेलखंड में वो जो भाषा है बहुत ही, मतलब ब्रज की लठमार, और थोड़ा सा उसके अंदर हल्का सा भाव और प्रेम भी आ जाता है। तो वो लहजा जो है ना, मुझे हरदम से बहुत फैसिनेट करता है, स्पेशली पान सिंह तोमर और बैंडिट क्वीन वगैरह जो फिल्म्स हैं, इन सब के अंदर। इनफैक्ट वो नत्था, वो यूज्ड टू स्पीक उसमें पीपली लाइव में, वो भी बुंदेली बोलता है। फिर वो
1: जी
0: एक
1: जी जी
0: एक और बहुत भाभी जी घर पे हैं, वो एक सीरियल है, वो मेरे बहुत क्लोज
1: जी
0: मित्र
1: जी
0: थे, जिनके जिनके अभी उनका देहांत हो गया, जिन्होंने जो राइटर थे उसके, वो उन्होंने वो एक कैरेक्टर हप्पू सिंह। तो ये सब बहुत बुंदेली बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, एक्चुअली पॉपुलर बोली है, पर वो कभी ऐसा मेन स्ट्रीम में, वो गाने मेन स्ट्रीम नहीं हुए थे। और ऐसा नहीं कि मैंने बुंदेली ढूंढने के लिए बुंदेली ढूंढा था, मुझे तो उत्तर प्रदेश और मध्य भारत की बोलियों में गाने चाहिए थे। तो लगभग 50% सॉन्ग से ऐसे जो है ना, सासा आले हंसा चाले अवधी है, फिर ये ब्रज है, आवागमन थोड़ा ब्रज और इसके बीच का है, आवागमन
1: जी
0: मिटा दो भोले शंकर। तो ये सारे गाने जो है ना एक एक करके, वो आइडिया ये था कि जितना हो सके हम मिट्टी की खुशबू इस फिल्म के अंदर लेके आए।
1: तो यहाँ पर गाना सुनवाते हैं।
0: हर हर महादेव।

0: पुजारी फिल्म का ये गाना था और इस गाने के साथ एक बार हम आपको फिर बुंदेलखंड ले चलते हैं। बुंदेलखंड की कोई ऐसी यादगार घटना हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: बुंदेलखंड में जब मैं पढ़ने से पहले भी, मतलब मुझे

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे हनुमान अंश फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी से ममता सिंह की बातचीत की पहली कड़ी। इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी सुनिएगा अगले सप्ताह इसी समय। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: आज के मेहमान।

पता था जुड़ेंगे दो दिलों के तार, किसे पता था दिल समंदर बन जाएगा, किसे पता था कि मिलेगा कोई साझेदार और बांट लेगा सारे गम और खुशियां। नरमो नाजुक रेशमी अल्फाज से जमाने की तलखी सोख लेगा। कहां पता था आंखों की नमी पर मुस्कानों के मोती सजा देगा, कहां पता था वो खुशियों के चांद को जिंदगी में धर देगा। नहीं

कभी कभी मोहब्बत का जादू इतना हसीन होता है कि जिस मोड़ पर हम कदम रखें वहां कोई अपने आप मौजूद मिलता है। रिश्तों की वही मिठास, वही चुपचाप साथ चलने का, हम चले तो साया भी कदमों के साथ था। राहें अजनबी थी मगर वो पास था। प्यार जब सच्चा हो तो जुदाई का फासला भी मिट जाता है।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। मोहब्बत की दुनिया में कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें लफ्ज में बयां करना मुश्किल होता है। कुछ लम्हे यूं गुजरते हैं जैसे मुट्ठी में बंद रेत, मुट्ठी से फिसल कर झड़ जाते हैं। कुछ लम्हे सदी की तरह ठहर जाते हैं। इन ठहरे हुए लम्हों में दिल बेकरार रहता है, बेचैन दिल को सुनाई देती है कोई पुकार।

जिंदगी की राहों में कभी फूल बिछे होते हैं तो कभी कांटे, मगर दिल कहता है अगर साथ में प्यार हो तो हर सफर आसान हो जाता है। ये राहें अक्सर हमें कई मोड़ पर ले जाती हैं, कभी मुश्किलें, कभी इम्तिहान और कभी दिलकश सपनों की डगर। लेकिन इन सब के बीच एक जज्बा है जो हमें आगे बढ़ाता है, वो है प्यार। अगर प्यार करने वाले का साथ अधूरा ही छूट जाए तो जिंदगी वीरान निर्जन

जिंदगी की राहों में कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे कोई साया हमेशा हमारे साथ है। हम जहां भी जाएं, कोई अपना हमें छोड़कर जाने ही नहीं देता। उसकी यादें, उसकी बातें, उसका साथ हमें अपने गिरफ्त में ले लेती है। हम कई बार उस इंसान को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम कहां छोड़ पाते हैं, बस ये गीत गुनगुना कर रह जाते हैं।

0: तराने नए पुराने।
1: बहुत स्वागत है आप सभी का तराने नए पुराने कार्यक्रम में। आप सभी को नमस्कार।

0: उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में आपने यारा दिलदारा फिल्म का ये गीत सुना। जतिन ललित का संगीत निर्देशन था और फिल्म इस गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने। तराने नए पुराने कार्यक्रम आप इस समय सुन रहे हैं।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सेहत के कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
3: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ प्लस वन। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
3: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना।
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

शराबी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में। अनजान की रचना अभी आपने सुनी। आइए सुनते हैं रेफ्यूजी फिल्म का ये गीत। सोनू निगम, अलका याग्निक की आवाजें हैं, जावेद अख्तर के बोल हैं, अनु मलिक का संगीत।

0: सेहत के कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
1: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ प्लस वन। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना।
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
3: मेरा साया साथ है।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 6 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और उसके 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 साल में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत दुनिया के

0: पांच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को एक विकसित देश बनाना है। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम एशिया में संकट पैदा न होता तो अर्थव्यवस्था के आकार के हिसाब से भारत दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल हो जाता। श्री सिंह ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 7.4% की दर से बढ़ रही है। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 साल बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह जानकारी दी। इससे पहले फरवरी 2023 में रेपो दर को 6.25% से बढ़ाकर 6.5% किया गया था। वर्ष 2023-24 में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया, हालांकि 2025 से इसमें कटौती शुरू की गई थी। रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त किया है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में GST विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार GST व्यवस्था में अगले चरण के सुधारों के लिए 5 सूत्री योजना का प्रस्ताव रखेगी। दिल्ली पुलिस ने कल के विरोध मार्च के दौरान नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में बगैर अनुमति के प्रवेश के आरोप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी OSD राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हिंदी को बढ़ावा देने का आधार भाषा के इस्तेमाल को थोपने के बजाय इसमें अधिक अवसर और भागीदारी को बढ़ावा देना होना चाहिए। हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक में उन्होंने कहा कि जब हिंदी रोजगार और पेशेवर अवसर सृजित करेगी तो इसका इस्तेमाल स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। इस अवसर पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की कौशल पत्रिका का लोकार्पण भी किया गया। रूस ने कल रात यूक्रेन के कई क्षेत्रों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इन हमलों में 4 बच्चों समेत 19 लोगों की मौत हो गई और करीब 60 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के अनुसार उत्तरी चेरनिहिव क्षेत्र का प्रिलुकी सबसे अधिक प्रभावित हुआ। वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केंसो सुआई को दिया गया है। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने यह सम्मान उन्हें असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटो कैटालिसिस की खोज के लिए दिया है। उन्होंने रसायन विज्ञान में मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब चुनने की प्रक्रिया पर काम किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे, प्रसारित करीत आहोत प्रादेशिक मराठी बातम्या। आकाशवाणी नागपूर हे मांगे कुलकर्णी आपल्याला प्रादेशिक बातम्या देत आहे। ठळक बातम्या। जनतेचा विश्वास आणि कोट्यवधी कार्यकर्त्यांचा समर्पण भाव हीच आपली मोठी ऊर्जा असल्याचं पंतप्रधानांचं प्रतिपादन। भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो दरात 0.5% वाढ, दर 5.5%। नीती आयोगाच्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमांतर्गत डेल्टा रँकिंग मध्ये गडचिरोली जिल्हा देशात प्रथम। आणि स्मृती मानधना भारतीय महिला क्रिकेट संघाची नवी कर्णधार। आता सविस्तर बातम्या। जनतेचा विश्वास आणि पक्षाच्या कोट्यवधी कार्यकर्त्यांचा समर्पण भाव हीच आपली मोठी ऊर्जा असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलंय। मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्याला आज 25 वर्ष पूर्ण झाली। तेव्हापासून आधी राज्य सरकारचे आणि त्यानंतर केंद्र सरकारचे प्रमुख म्हणून ते गेली सलग 25 वर्ष कार्यरत आहे। या निमित्तानं आज नवी दिल्ली इथं झालेल्या विकसित भारत संकल्प सभेला त्यांनी संबोधित केलं। सरकार प्रमुख म्हणून गेल्या 25 वर्षात कमावलेला जनतेचा विश्वास आणि या काळात आलेला अनुभव हीच आपली मोठी संपत्ती असल्याचं त्यांनी सांगितलं।
2: भूज के भूकंप ने मुझे पुनर्निर्माण के लिए डटे रहना सिखाया। चंद्रयान ने मुझे

0: वो बताएंगे फिल्म के शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनके जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
0: सेहत के कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
4: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
4: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना।
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक विलक्षण गायक।
5: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
5: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: इस गाने के साथ ही आज का तराने नए पुराने कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: तराने नए पुराने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज और कल, आज के शेष और कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर संध्या रंजन में भक्ति संगीत सुनिएगा। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम के अंतर्गत श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं भाग 7। आमंत्रित कलाकार गायक और संगीतकार शेखर सेन, संवादिका ममता सिंह, संपादन सहयोग झरना सोलंकी की प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 7 बजे से फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग। हवा महल में रात 8 बजे सुनिए झलकी कल के नाथ, लेखन धनेंद्र कुमार जैन का, निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर का। 8:15 पर चित्रलोक। 9 बजे आपके लिए, 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम। आज का केंद्रित है गजल साम्राज्ञी बेगम अख्तर पर, आलेख और स्वर यूनुस खान का। 10 बजे छाएगी, 10:30 पर ढलती जाए रात। अब सुनिए कल सुबह और दिन भर के कार्यक्रमों के बारे में। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार सुनिएगा सुबह 6:05 पर। 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान। 6:45 सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं भाग 8। आमंत्रित कलाकार गायक

और संगीतकार शेखर सेन। सात बजे से सुबह भूले बिसरे गीत, 7:30 पर हम है राही प्यार के, 8:15 पर त्रिवेणी, 8:30 पर चित्रलोक, 9:30 पर आज के फनकार। कल सुबह का यह कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री राजश्री।

सुबह 10 बजे पिटारा में आज के मेहमान फिल्म लेखक निर्देशक विशाल चतुर्वेदी से ममता सिंह की बातचीत सुनिएगा। 12 बजे यादों की महफिल, 11 बजे सुनिए रंग तरंग और 1 बजे सुरीला सुर पर, 2 बजे त्रिवेणी, 2:30 पर सदाबहार नगमे, 3 बजे सखियों सहेलियों का कार्यक्रम सखी सहेली, प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। शाम 4 बजे हेलो फरमाइश, 5 बजे छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने। छह बजकर 35 मिनट पर संध्या रंजन, 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम। कल सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं भाग 8। आमंत्रित कलाकार हैं गायक और संगीतकार शेखर सेन, संवादिका ममता सिंह, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 7 बजे से फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला, 8 बजे हवा महल कार्यक्रम में सुनिएगा नाटिका हम किसी से कम नहीं, लेखन चंद्र किरण सोनरेखा और निर्देशन चंद्र प्रभा भटनागर। 8:15 पर चित्र लोक, 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए, 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री राजश्री पर, 10 बजे छाएंगे, 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज के शेष और कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा झरोखा के अंतर्गत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या रंजन।

खानदान फिल्म की ये रचना भी आपने मोहम्मद रफी के और साथियों के स्वरों में सुनी। राजेंद्र कृष्ण ने लिखी थी ये रचना और रवि ने इसकी धुन बनाई थी। प्रस्तुत है हनुमान अंश की ये रचना।

हनुमान अंश फिल्म की रचना भी आपने सुनी, निवेदिता पद्मनाभन के स्वर में गीत और संगीत ऋषि पाठक का था। अब प्रस्तुत है घराना फिल्म की ये रचना मोहम्मद रफी और आशा भोसले के स्वरों में।

0: इस रचना के साथ ही आज का संध्या रंजन कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता की अगली कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित हैं और शेखर दादा हमारे सामने बैठे हैं। शेखर दादा, हमें बताइए कि आज की इस कड़ी में कौन सी भक्ति रचना को आप शामिल करेंगे और किन गायिका को आप इसमें शामिल करेंगे?
2: दरअसल मैं आपको उस कालखंड में ले जाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि श्रोता इस बात को समझें कि एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद 1947 में जब हमें स्वाधीनता मिली और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आया
1: जी।
2: तो उसी कालखंड में लोगों के उत्साह के साथ साथ एक और बड़ी क्रांतिकारी घटना हुई थी
1: जी जी।
2: और वो घटना ये हुई थी कि एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था मीरा। और उस मीरा फिल्म में अभिनय भी किया और गाया भी।

0: दक्षिण की गायिका ने, जिसको उस फिल्म के पहले उत्तर भारत में कोई नहीं जानता था
1: जी जी,
0: और वो थी एमएस सुब्बुलक्ष्मी जी, जिनको बाद में हम सब के लिए बड़े गर्व का विषय है
1: जी,
0: कि हम सब भारतीय कलाकारों में जिन्हें सबसे पहला भारत रत्न का पुरस्कार मिला वो थी श्रीमती एमएस सुब्बुलक्ष्मी
1: जी जी।
0: तो मेरे लिए तो वो माँ सरस्वती का ही एक अंश है, क्योंकि जितना सुंदर उन्होंने
1: जी जी।
0: गाया है, और श्रोताओं को शायद पता भी नहीं होगा कि जीवन के अधिकांश, जब वो उनको एक बार बहुत उनका नाम हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर उन्होंने पैसे लेने बंद कर दिए
1: जी।
0: पर इससे ये अनुमान मत लगाइए कि वो निशुल्क कार्यक्रम करती थी। उनके कार्यक्रमों के कुछ नियम थे। वो कहती थी कि आप एक काम करिए, आप 2 लाख रुपए कैंसर एसोसिएशन में दान दीजिए और उसकी रसीद मुझे दिखा दीजिए, मैं आपके कार्यक्रम में आकर गाकर जाऊंगी।
1: बहुत बड़ी बात थी।
0: तो इस तरह की चीजें किसी संस्था के लिए या कैंसर पेशेंट्स के लिए, बहुत तरह की चीजें किसी वृद्धाश्रम के लिए। तो उन्होंने अपने जीवन का जो लक्ष्य बनाया था वो ये था कि एक कलाकार के नाते मैं अधिक से अधिक उपयोगी कैसे हूँ इस समाज के लिए। समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया, मुझे नाम भी दिया, मुझे यश भी दिया, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया, तो मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि मैं समाज को कुछ लौटाऊं।
1: जी जी।
0: तो ये एक बहुत अद्भुत चीज है, और जिस तरह के सहस्त्र नाम और जिस तरह के स्तोत्र और मंत्र आज हमें एम एस सुब्बुलक्ष्मी जी के मिलते हैं
1: जी।
0: लेकिन उस कालखंड की बात मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, 1947, और ये फिल्म का नाम था मीरा। नायिका भी थी और गायिका भी थी श्रीमती एम एस सुब्बुलक्ष्मी, और उनका ये प्रसिद्ध भजन मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी श्रोता सुने। मोरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मोरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, एम एस सुब्बुलक्ष्मी जी।

मीरा फिल्म की ये भक्ति रचना थी और MS सुब्बलक्ष्मी के स्वर में हम सुन रहे थे। शेखर दादा, हमें लगता है कि हम सबका बचपन बड़ा हुआ है इस भजन को सुनकर, और इस भजन को सुनकर जो संगीत के विद्यार्थी हैं, शास्त्रीय संगीत के विद्यार्थी चाहे सुगम संगीत के विद्यार्थी, इन्होंने अपने गायन को समृद्ध किया है और शायद इसीलिए उन्हें संगीत की तपस्विनी भी कहा जाता था। MS सुब्बलक्ष्मी की जो स्वर साधना थी बड़ी समृद्ध थी।

0: थी, तो इनके गायन सफर की सबसे क्या खास बात आपको नजर आती है?
1: जो सबसे मुख्य बात है वो ये था कि जो भी अच्छे गायक हुए और जिन्होंने भी भक्ति संगीत पर बहुत ज्यादा जोर रखा, वो धीरे धीरे उनका स्वभाव, उनका व्यक्तित्व जो है वो अपने आप आध्यात्म की ओर उसका रुझान होने लगा।
0: जी जी।
1: तो ये एक चीज थी। और दूसरा जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आदरणीय MS सुब्बुलक्ष्मी जी का अगर आप रेपर्टायर सुने भजनों का, तो उनके भजन, जबकि वो कर्नाटक संगीत की विदुषी थी, कर्नाटक संगीत की शास्त्रीय गायिका थी मूलतः, वो उत्तर भारतीय संगीत की गायिका नहीं थी, परंतु अगर आप उनका रेपर्टायर सुनेंगे तो आप देखेंगे कि जब उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के सब राग गाए, अभी जैसे एक राग है बागेश्री, बागेश्री में आपको बिरले भजन सुनाई देंगे, बहुत कम लोग गाते हैं, आपको अधिकांश भजन हमारे यहाँ सुनाई देंगे खमाज में, भैरवी में, पीलू में, काफी में, ये सब राग है, पर भी जैसे ये राग है बागेश्री

0: तो ये राग बागेश्री है और इसमें मैं चाहता हूँ कि एम एस सुब्बुलक्ष्मी जी की एक बहुत ही सुंदर रचना है, निसदिन बरसत नैन हमार।
1: क्या बात
0: आप सुनिए, एक महान गायिका को हम क्यों महान कहते हैं, ये भजन सुनकर आपको उसका अनुमान होगा
1: जी।

0: एमएस सुब्बलक्ष्मी और राधा विश्वनाथन के स्वर में ये भक्ति रचना। शेखर दादा, आपने सुनवाई हमारे श्रोताओं को, इसके बाद हम चाहते हैं आप कुछ गाकर प्रस्तुत करें।
1: मैं चाहता हूँ कि एक पुरानी रचना है, शास्त्रीय संगीत की है
0: जी,
1: पर जब भी मैं गाता हूँ तो मुझे लगता है कि ये शास्त्रीय संगीत कम है और भजन अधिक है।
0: जी जी,
1: पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की ये रचना है
0: जी।

0: वाह शेखर दादा, आपने बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर दिया और हम सब सुधबुध खोए आपको सुनते रहे आपके स्वर को। और एक साधक का स्वर हम सबकी आत्मा तक बैठ करती है, तो आपको हम धन्यवाद कह रहे हैं इस रचना की प्रस्तुति के लिए। अब आज का समय यहीं समाप्त हो रहा है, तो हम लेते हैं श्रोताओं से अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: शताब्दी की भक्ति रचनाएं, ये श्रृंखला आप सुन रहे हैं इन दिनों आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की 7वीं कड़ी आज आपने सुनी। तबला संगत आशीष विश्वास, तकनीकी सहायक HR पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत अनियमितता झाल्याची तक्रार करणारे उमेदवार समाजकंटक नाहीत आणि भरती परीक्षा निपक्षपातीपणे पार पाडण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे असं आज मुंबई उच्च न्यायालयानं बजावलं. एमपीएससी परीक्षेमध्ये गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करत विद्यार्थी पुण्यामध्ये निदर्शनं करत आहेत त्यामुळे सार्वजनिक शांततेचा भंग होत असल्याची तक्रार करणारी याचिका न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या पीठासमोर दाखल झाली आहे. त्यावर न्यायालयानं आज हे मत नोंदवलं. बॅडमिंटनमध्ये भारताची पुरुष दुहेरीतली जोडी कृष्णप्रसाद गर्गा आणि पृथ्वी कृष्णमूर्ती रॉय यांनी अत्यंत चुरशीच्या लढतीत आर्टिक ओपन सुपर 500 स्पर्धेच्या दुसऱ्या फेरीमध्ये आज प्रवेश केला. फिनलंडमध्ये वांता इथे ही स्पर्धा सुरू आहे. ठळक बातम्या पुन्हा एकदा. जनतेचा विश्वास आणि कोट्यवधी कार्यकर्त्यांचा समर्पण भाव हीच आपली मोठी ऊर्जा असल्याचं प्रधानमंत्र्यांचं प्रतिपादन. रिझर्व्ह बँकेनं केली रेपो दरात 0.5% वाढ. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीमध्ये जीडीपी वाढीचा दर 7.1% राहण्याचा अंदाज. रसायनशास्त्रासाठीचा नोबेल पुरस्कार यंदा फ्रान्सचे हेन्री कागान आणि जपानचे केन्सो सोय यांना जाहीर. आणि भारतीय महिला क्रिकेट संघाचं कर्णधारपद स्मृती मंधानाकडे. याबरोबरच आकाशवाणी मुंबई केंद्रावरचं हे राष्ट्रीय बातमीपत्र संपलं. नमस्कार.
1: दिस इज दिल्ली. प्लीज स्टँड बाय फॉर आवर नेक्स्ट प्रोग्राम. दिस इज आकाशवाणी. ऑन द ईव ऑफ द 94th एनिव्हर्सरी ऑफ इंडियन एअर फोर्स वी नाऊ ब्रिंग यू अ मेसेज बाय द चीफ ऑफ एअर स्टाफ एअर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंग. परम विशिष्ट सेवा मेडल पति विशिष्ट सेवा मेडल.
2: भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर प्रस्तुत है भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल का संदेश.
3: नमस्कार. भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर सारे वायु योद्धाओं की ओर से मैं सभी देशवासियों को नमन करता हूँ. वायुसेना दिवस हमारी उस गौरवमय यात्रा का उत्सव है जो अटूट निष्ठा, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान की नींव पर रची गई है. सन 1932 में मात्र 4 वापिती विमानों से उड़ान भरने वाली हमारी वायुसेना आज एक अत्यंत सक्षम, नेटवर्क सेंट्रिक और बहुआयामी फोर्स बन चुकी है. आज की दुनिया अस्थिर, अनिश्चित और जटिल दौर से गुजर रही है. हितों और परिस्थितियों के लगातार बदलने के इस माहौल में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नए संघर्ष उभर रहे हैं. इन संघर्षों में हमने देखा है कि वायु शक्ति राष्ट्र के हितों की रक्षा करने का एक प्रमुख साधन है. देश की वायु शक्ति का प्राथमिक माध्यम होने के नाते भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ संकल्प के साथ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है. लास्ट ईयर ऑपरेशन सिंदूर रीअफर्म द पिवोटल पावर ऑफ इंटीग्रेटेड एयर ऑपरेशंस डेमोंस्ट्रेटिंग आवर कैपेबिलिटी and capacity to defend our sovereignty. Through major milestones this year, including exercise Vayu Shakti, various bilateral exercises, Dronathon, and the ongoing historic multilateral air exercise Tarang Shakti, we are actively testing our combat readiness and rapidly absorbing niche technologies into our operational plans. Apni marak shamta ke alawa, Bharatiya Vayu Sena ne sankat ke samay mein hamesha aage badhkar देश और मानवता की सेवा की है. चाहे देश के विभिन्न प्रदेशों में आई भयंकर बाढ़ के दौरान नागरिकों की सहायता हो या जंगलों में लगी भीषण आग पर काबू पाना हो, हमारे वायु योद्धाओं ने हमेशा कौशल और साहस का परिचय दिया है. हमारी यह प्रतिबद्धता हमारी सीमाओं तक सीमित नहीं है. नेपाल और युगांडा से लेकर वेनेजुएला, फिलीपींस, मेडागास्कर, थाईलैंड, क्यूबा और जमैका तक हमारी वायुसेना ने HADR मिशनों के माध्यम से सेवा के इसी संकल्प को निरंतर आगे बढ़ाया है जो सेवा परमो धर्म एवं वसुधैव कुटुंबकम की सच्ची भावनाओं को दर्शाता है. आत्मनिर्भरता हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत है. लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अंकुर ट्रेनर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, अस्त्र आकाश तथा ब्रह्मोस जैसी स्वदेशी प्रणालियां इसी संकल्प का प्रमाण है.

0: आत्मनिर्भरता की इस नींव पर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को तेजी से अपनाना भारतीय वायुसेना की सर्वोच्च प्राथमिकता बन चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑलरेडी फाइंडिंग इट्स वे इनटू एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर फंक्शनिंग। आवर विजन इज टू बिल्ड एन एआई ऑगमेंटेड फोर्स वेयर टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स अस बट ह्यूमंस रिमेन इन कमांड। आवर रोल्स एंड टास्क नेचुरली टेक अस बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर एज स्पेस इज अ नेचुरल एक्सटेंशन of the air domain. Our deepening partnership with ISRO, including our contribution to Gaganyaan mission, reflects this commitment. These capabilities form an integral part of our vision for 2047. Technology is only an enabler. The foundation of decisive victory has always been in the unity of purpose. Modern wars are not won by the strength of a single service, but through the combined strength of the entire nation. For Indian Air Force, jointness is the only way forward. Our endeavor is to ensure that the reach, speed, and precision of air power are fully harnessed so that its effects are felt across every dimension of the battle space. Is avsar par main apne aadarniya air veterans ko naman karta hu. Aapki durdrishti, samarpan aur margdarshi netritv ne hi is sashakt bhartiya vayusena ki neev rakhi hai jo aaj राष्ट्र की सुरक्षा के लिए पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी है। साथ ही मैं अमर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने कर्तव्य के मार्ग पर अपनी प्राणों की आहुति देकर तिरंगे का मान रखा। आई ऑल्सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्नॉलेज दैट थ्रू एवरी चैलेंज द अनवेवरिंग सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट ऑफ आवर फेलो सिटीजंस हैव बीन अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द इंडियन एयरफोर्स। देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और आप सभी का आशीर्वाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अंत में हम समस्त वायु योद्धा भारतीय वायु सेना अचूक अभेद एवं सटीक की अवधारणा का स्मरण करते हुए यह संकल्प लेते हैं कि राष्ट्र की रक्षा उसकी संप्रभुता और अखंडता के लिए हम सदैव समर्पित रहेंगे तथा अपने आदर्श वाक्य नभ स्पृशम दीप्तम पर अडिग रहेंगे। जय हिंद।
1: On the eve of the 94th anniversary of Indian Air Force, you were listening to a message by the Chief of Air Staff, Air Chief Marshal Amarpreet Singh, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal.
2: अभी आप भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल का संदेश सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: सेहत के कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
1: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ प्लस वन। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सत्यमेव जयते टू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थे जारा एस खान की और जैस मानक की। गीतकार और संगीतकार थे तनिष्क बागची। इस गीत के पहले आपने गीत सुना था गुड न्यूज फिल्म से मंज म्यूजिक का और हरवी सहारा नेहा कक्कर की आवाजों में आपने वो गीत सुना था और गीत तनिष्क बागची का और हरवी सहारा दोनों ने मिलकर लिखा था। आइए अब सुनते हैं ये गाना।

पुष्पा 2 फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, श्रेया घोषाल की आवाज थी, रकीब आलम के बोल थे, देवीश्री प्रसाद का संगीत था। चित्रलोक कार्यक्रम में अब लेते हैं बहुत छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे।

बहुत स्वागत फिर से चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का। फिल्म सोचा न था का ये गीत आप सुन रहे हैं। आवाजें हैं सोनू निगम और संजीवनी की। इरशाद कामिल के बोल हैं, संदेश शांडिल्य का संगीत।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: किरण का फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मिथुन और दीपाली की आवाजें थी, सईद कादरी के बोल थे और मिथुन का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना अवश्य पूरा करेगा। उन्होंने सरकार प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। भारत ने कालासागर क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की है। कहा, भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए दोनों देशों से बातचीत कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान देने की भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्षों में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि करके इसे 5.5% कर दिया। चालू वित्त वर्ष के लिए GDP वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेस ने वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सुआई को देने की घोषणा की और पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने सुबह नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
2: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
1: श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने के प्रयास किए जाते थे, जबकि आज भारत निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहा है।
2: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती है। तब इंपोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इम्पोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी

0: स्थिति के चर्चे होते हैं।
1: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी।
2: जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाची ने भारत के विकास और वैश्विक स्तर पर बढ़ती पहचान में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने श्री मोदी को हमारे समय का अवतार बताया और कहा कि उन्होंने भारतीयों में अधिक आत्मविश्वास और गर्व की भावना जगाई है। नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने श्री मोदी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने भी श्री मोदी को बधाई दी है और भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया और लोकतंत्र में लगातार 25 वर्ष के नेतृत्व को एक दुर्लभ उपलब्धि करार दिया। बोत्सवाना के राष्ट्रपति जुमा बोको ने भी श्री मोदी को बधाई देते हुए भारत के लोगों के प्रति उनके समर्पण और सेवा की सराहना की और दोनों देशों के बीच स्थायी मित्रता की उम्मीद की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन इस माह 7 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। IMC 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 से पहले नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली संगठन GSMA के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने विकासशील देशों के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी के लिए शांति और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए मुक्त, खुले और नियम आधारित वैश्विक समुद्री व्यवस्था का आह्वान किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित सागर मंथन द ग्रेट ओशंस डायलॉग के लिए अपने संदेश में ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता लाल कृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सभी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सभी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने पिछले एक दो दिनों में काला सागर क्षेत्र में हुए वाणिज्यिक जहाजों पर सिलसिलेवार हमलों की निंदा की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए गंभीर खतरा हैं और नाविकों की जान जोखिम में डालते हैं।
2: कल से लेकर आज तक हमने देखा है कि 4 जहाजों पर अटैक हुई है। इस हमले की हम घोर निंदा करते हैं। इससे हमारे जो वाणिज्य की नौ परिवहन है, साथ में जो हमारे नाविक समुदाय के लोग हैं, उनको खतरे के दायरे में लाया जा रहा है। पहला जहाज MV रायोद मामादोफ, ये भी ब्लैक सी में इस पर अटैक हुई, जिसमें 3 भारतीय नागरिक थे। उसमें से 1 भारतीय नागरिक को चोट पहुंची और उनको वहां पर अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है।
1: रूस यूक्रेन संघर्ष पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने लगातार लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की वकालत की है और शांति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय आ गया है। प्रवक्ता ने कहा कि दोनों पक्षों के साथ भारत की बातचीत की रूस और यूक्रेन दोनों ने सराहना की है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान देने की भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस इस संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सुझाव देने की भारत की तत्परता की

0: सराहना करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के सिर दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को हकीकत में बदला गया है।
1: भारत और फ्रांस ने नवंबर 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 जलवायु सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की थी। यह एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर ऊर्जा की पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस गठबंधन का उद्देश्य सौर ऊर्जा को सस्ता, भरोसेमंद और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध कराना है।
2: This alliance is so important. We want to bring solar energy into our lives and homes by making it cheaper, more reliable and easier to connect to grid. We will collaborate on research and innovation. We will share knowledge and exchange best practices. We will cooperate on training. We will partner with other international initiatives on renewable energy.
1: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक आशीष खन्ना ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि ISA प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच और भारत की वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता को दर्शाता है।
3: माननीय प्रधानमंत्री ने 2018 में स्थापना दिवस पर 1000 गीगावाट का जो लक्ष्य रखा था, अगर हम 2026 में देखें जब दुनिया 3000 गीगावाट कर चुकी है, तो उनकी दूरदर्शिता सही मायने में दिखलाता है।
1: आज अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच बन चुका है। वर्तमान में 129 देश इसके सदस्य के रूप में पंजीकृत हैं। भारत के नेतृत्व में ISA का उद्देश्य लोगों तक ऊर्जा की पहुंच को बेहतर बनाने के साथ साथ दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन को काफी कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.5% हो गई है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी।
4: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions,
5: बदलते आर्थिक तथा वित्तीय हालात, हाल की घटनाक्रमों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से प्रमुख नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 5.25%, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 5.75% कर दिए गए हैं।
4: एंड द बैंक रेट टू 5.75%।
0: भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है और इसे अनुसूचित बैंकों की सूची से हटा दिया है। RBI ने कहा है कि इस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया गया है। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA समृद्धि शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग पर चर्चा के लिए वरिष्ठ भारतीय और EFTA के अधिकारियों, उद्योगपतियों और उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सुआई को देने की घोषणा की गई है। एक रिपोर्ट।
6: स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने उन्हें असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटो कैटेलिसिस की खोज के लिए ये सम्मान देने की घोषणा की है। उन्होंने रसायन विज्ञान में दर्पण प्रतिबिंब चुनने की प्रक्रिया पर काम किया। दोनों वैज्ञानिकों ने रसायन विज्ञान की करीब 100 वर्ष पुरानी गुत्थी सुलझाई है। उन्होंने बताया कि किसी रासायनिक प्रक्रिया में एक दूसरे का प्रतिबंध दर्पण प्रतिबिंब जैसे दो अणुओं में से सिर्फ

0: के रूप कैसे बनाया जा सकता है। ये खोज दवाओं सहित कई तरह से रसायन बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आइची नागोया में आयोजित किए जाएंगे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना अवश्य पूरा करेगा। उन्होंने सरकार प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। भारत ने काला सागर क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की। कहा, भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए दोनों देशों से बातचीत कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान के लिए भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सुवाई को देने की घोषणा की है। और पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में होंगे भारतीय दल के ध्वजवाहक। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, आई एम वल्सा विलियम्स विद न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation by 2047 through visionary policies and hard work. Completes 25 years of continuous public service as head of government. India condemns attacks on commercial shipping in Black Sea region, says New Delhi engaging Moscow and Kiev to bring peace. Russia expresses gratitude to India for its readiness to contribute to resolving the Ukraine conflict. RBI raises repo rate by 25 basis points to 5.5% in nearly 4 years. Also projects GDP growth rate at 7.1% for current financial year. Prime Minister to inaugurate India Mobile Congress in New Delhi tomorrow. French-Japanese scientist duo Henri Bicaran and Kenzo Tsui win 2026 Nobel Prize in Chemistry for solving molecular asymmetry mystery. And Paralympic champions Pramod Bhagat and Bhavina Patel to lead India as flag bearers at Asian Para Games beginning in Japan later this month. Prime Minister Narendra Modi today completed 25 years of continuous public service as head of the government. Mr. Modi visited Sri Vinayak Temple at Sarojini Nagar in New Delhi in the morning and offered prayers there. On the occasion, the Prime Minister addressed the Vikasit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi. He said, India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation by 2047 through visionary policies and hard work. Mr. Modi said the present government's policy focuses on solutions for all citizens.
3: सबका साथ सबका विकास, यही मेरे लिए सुशासन का आधार रहा है। समस्या सबकी है तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए, और इसलिए हमने सुशासन को सैचुरेशन से जोड़ा। सैचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े, कोई पात्र छूटे नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं, और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके।
2: The Prime Minister said India, once associated with discussions on policy paralysis, is now increasingly being discussed for its growing strength and resilience. He emphasized that over the past 12 years, the situation has changed completely. Mr. Modi said earlier, efforts were made to increase imports, while today India is setting new export records. He highlighted that the decade from 2015 to 2025 witnessed the highest sustained agricultural growth since independence, surpassing all previous records. Mr. Modi said such transformation is possible when the

आप सुन रहे थे नूरजहां फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। शकील बतायनी के बोल थे, रोशन का संगीत था। इस गाने के पहले आपने सुना था मुगले आजम फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज थी, शकील बतायनी के बोल थे और नौशाद की तर्ज थी। अब आइए सुनते हैं 20 साल बाद फिल्म का ये गीत।

मधुमती फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों सखियों की आवाजों में। शब्दकार थे शैलेंद्र, संगीतकार थे सलील चौधरी। इसी गीत के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दीजिए सविता सिंह को। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बाकी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी।

जबकि संगीत तकरीबन चोर में बदलता जा रहा है। गजलों का वो सुनहरा दौर, गजलों की वो रोशन महफिलें बार बार याद आती हैं। हमारे जहन में अक्सर ये सवाल उठता है, वो शम्मा क्यों मद्धम पड़ गई।

दरअसल ये जमाना तेज रफ्तार हो गया। लोगों के भीतर वो सब्र नहीं रहा जो गजल सुनने के लिए लाजमी है। आइए आज के इन लम्हों को यादगार बना दें अख्तरी बाई फैजाबादी यानी बेगम अख्तर की याद से।

अख्तरीबाई फैजाबादी का जन्म 7 अक्टूबर 1914 को फैजाबाद में हुआ था। बचपन से संगीत की तरफ रुझान था, परिवार इसके खिलाफ था, लेकिन चाचा ने साथ दिया। बेगम अख्तर ने फैजाबाद में सरंगी के उस्ताद ईमान खां और अता मोहम्मद खां से संगीत की शुरुआती तालीम ली। इसके बाद उन्होंने मोहम्मद खान और अब्दुल वहीद खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखा। बचपन की एक बहुत ही यादगार घटना है। उन दिनों अख्तरी बाई सही सुर नहीं लगा पाती थीं। उनके गुरु ने इसके बारे में कई बार सिखाया और जब वो सीख नहीं पाईं तो डांट दिया। उसके बाद बेगम अख्तर रोने लगीं और कहा, हमसे नहीं बनता नाना जी, मैं गाना नहीं सीख पाऊंगी। तब उनके उस्ताद ने कहा, बिटिया इतने में हार मान ली? नहीं बिट्टू, ऐसे हिम्मत नहीं हारते मेरी बहादुर बिटिया, चलो एक बार फिर से सुर लगाने में जुट जाओ। उनकी ये बात सुनकर बेगम अख्तर ने रियाज शुरू किया और सही सुर लगाए।

80 के दशक में जब बोलती फिल्मों का दौर आया तो बेगम अख्तर के सामने कोलकाता की ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी ने अपनी फिल्मों में अभिनय की पेशकश की। इस तरह सन 1933 में बेगम अख्तर ने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती जैसी फिल्मों में काम किया। इसके बाद मशहूर निर्देशक महबूब खान ने उन्हें सन 1942 में आई अपनी फिल्म रोटी की नायिका बनाया। इस फिल्म में चंद्रमोहन और शेख मुख्तार जैसे कलाकार थे। इस फिल्म का संगीत अनिल बिस्वास ने दिया था और फिल्म के तकरीबन 6 गीत बेगम अख्तर की आवाज में रिकॉर्ड किए।

सन 1945 में जब बेगम अख्तर की शोहरत अपने शबाब पर थी, तब उन्होंने इश्तियाक अहमद अब्बासी से निकाह कर लिया और अख्तरी बाई फैजाबादी बेगम अख्तर बन गई। वो गायकी छोड़कर पर्दा नशी हो गई। उन दिनों में वो बीमार रहने लगी। डॉक्टरों ने बताया कि बीमारी की एक वजह ये है कि वो अपने पहले प्यार यानी गायकी से दूर हैं और उनके शौहर ने उन्हें प्रेरित किया। सन 1949 में एक बार फिर वो गायकी की दुनिया में लौटी और आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से गाना गाने लगी।

रेडियो में गाना शुरू हुआ तो बेगम अख्तर संगीत सम्मेलनों में जाने लगी। इस बीच फिल्मों में भी वापसी हुई। महान संगीतकार मदन मोहन के कहने पर बेगम अख्तर ने 1953 में प्रदर्शित फिल्म दाना पानी का एक गाना गाया।

सन 1954 में उन्होंने फिल्म एहसान का एक गाना गाया। सन 1958 में सत्यजीत रे की फिल्म जलसा घर में भी उन्होंने गाना गाया।

बेगम अख्तर मदन मोहन को तब से जानती थीं, जब वो लखनऊ रेडियो स्टेशन पर थे। बेगम अख्तर दिल्ली आई हुई थीं और उन्होंने रेडियो पर मदन मोहन का एक गाना सुना। फिर आधी रात को बेगम अख्तर ने मदन मोहन को फोन किया और कहा कि वही गाना सुनाओ, कदर जानी ना। मदन मोहन ने फोन पर ही गजलों की रानी बेगम अख्तर को ये गाना सुनाया और करीब 22 मिनट तक मदन मोहन फोन पर ट्रंक कॉल के जमाने में बार बार ये गाना सुनवाते रहे और बेगम अख्तर सुनती रही।

0: बेगम अख्तर की सबसे बड़ी खासियत है उनका क्लासिकी गजलों को गाना और क्लासिकी अंदाज में गाना। गजलों की शुद्ध दुनिया को उन्होंने बिल्कुल वैसा का वैसा रखा, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की, नए साजों का कोई इस्तेमाल नहीं किया। बेगम अख्तर गजलों की दुनिया की एक क्लासिकी आवाज के तौर पर हमेशा बहुत इज्जत के साथ याद की जाती है।
1: बदलते हुए जमाने ने जहां हर चीज को कुछ नयापन दिया, वहां मुसीकी ने भी नई कदरों की कदर की है। मैं नयेपन की मुखालिफ नहीं, लेकिन ये नयापन वहीं तक मुनासिब है जहां तक आज के फनकार और मुसीकार नयेपन के चक्कर में तहजीब का दामन न छोड़ें। गजलें पहले भी गाई जाती थीं, आज भी गाई जाती हैं, मगर असल में गजल वही कहलाने की मुस्तहक है जिसमें गजल का रवायती अंदाज मौजूद हो। मिसाल के तौर पर गजल की ये बंदिश सुनिए जो मुझे बहुत पसंद है।

0: सरकार ने बेगम अख्तर को सन 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया। सन 1972 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला और सन 1975 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
1: गजल में एक ऐसी कैफियत है और अच्छे शोरा की गजलों में तो सुभान अल्लाह सुभान, सुन के तबीयत खुश हो जाती। तो बताइए ये सिर्फ पढ़ के जो लुत्फ आता है और गाने के बाद इसमें क्या लुत्फ पैदा होगा कि अगर वो उस अंदाज से गाई जाए जिस तरह गजल गाया करते थे, तो मेरा ख्याल है कि इंसान बगैर रोए तो नहीं उठना चाहिए उसको।

बेगम अख्तर की आवाज का जादू अपने शबाब पर था। उन्होंने गजलों की दुनिया को रोशन कर रखा था, पर तभी 30 अक्टूबर 1974 को अचानक उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। गजलों की दुनिया की एक शम्मा हमेशा के लिए बुझ गई, लेकिन शुक्रगुजार हैं उन रिकॉर्ड्स का जिनके जरिए बेगम अख्तर की आवाज को हमने संजो कर रखा।

ये था बेगम अख्तर की याद में हमारा विशेष कार्यक्रम। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी।

0: सामिन, कुछ रिश्ते जैसे जन्म जन्मांतर के लगते हैं, क्योंकि ये रिश्ते केवल इस जीवन के नहीं होते, सात जन्मों से साथ हैं जैसे यूं लगता है कभी कभी। हालांकि प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं है, पर प्यार में लगता है कि हम हर पल साथ रहें, एक दूसरे में खोए खोए से, एक दूसरे में गुथे हुए से, क्योंकि ये प्यार सिर्फ प्यार नहीं, आदत भी नहीं, रूह का एक हिस्सा बन जाता है तब।
1: भूल गया सब कुछ, भूल गया सब कुछ।

0: मैंने उस दिन पहली बार अपने भीतर उतर कर देखा। वहां मैं थी और वो था। उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा था, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। उसने कहा था, तुम्हारा चेहरा चांद जैसा नहीं है, पर तुम एक प्यार से लिखी हुई किताब हो जिसे मैं पढ़ना चाहता हूँ। तुम जैसी हो तुम वैसी ही पूरी हो। कहते कहते उसकी आंखें शरारती हो गई थी।
1: रूप तेरा मस्ताना प्यार।

मैं चाहती थी कि कोई मेरे जज्बात को बिना बोले समझे। फिर तुम मिल गए। साधारण सा प्यार भी असाधारण हो जाता है तुम्हारे साथ जैसे। न कोई बड़े सपने, न दीवानगी, न झूठा रोमांस। तुम्हारा प्यार किसी फिल्मी डायलॉग से शुरू नहीं होता, वो तो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। पर हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरी आंखों में झांककर शरारती अंदाज में

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर कोई थोड़ा सा भी थाम ले तो मन थिरकने लगता है, जिंदगी खुशगवार हो जाती है तब। हाँ, छोड़कर चले जाना तो आसान है, लेकिन थामे रहना, जैसे तुमने थामा मुझे। सैकड़ों को प्यार करने की जरूरत नहीं होती, तुम्हीं ने तो कहा था बस एक को 100 तरीके से प्यार किया जाए वही काफी है। प्रेम की जरूरत होती है सच्चाई, विश्वास और धैर्य। जरा थाम कर तो देखिए किसी को, कभी किसी तरह।

उसका यूं गले लगाना एक अजीब सुंदर सा एहसास है। वो थोड़ा सा स्पर्श, वो थोड़ी सी करीबी, अहा, एक आवेग नहीं, पल भर की शांति है वहां जैसे। उसका वो आलिंगन एक विश्वास देता है मेरे मन को। उसकी बाहों की खामोशी मेरी टूटन को जोड़ देती है। उसका यूं गले लगाना जैसे दिल की गहराइयों में पना देता है मेरे समूचे अस्तित्व को।

सिर्फ एक अनुभव नहीं, प्रेम साथ रहने का नाम भी नहीं। ये तो एक रूपांतरण है। हाँ, एक रूपांतरण। तपिश है, नरमाहट है, गर्माहट है, विश्वास है, प्राणवायु है। ये तो उसका प्रेम सर्दियों में सुबह की सूरज की गर्मी जैसा है। उसका चाहना गर्मी की तपन से दूर एक ठंडक का एहसास देता है। कभी कभी ये प्रेम बसंत में हवा की हल्की सी सरसराहट जैसा लगता है, और कभी कभी वो प्रेम सितार की मधुर तान जैसा बन जाता है। प्रेम की वो गर्माहट, वो तपिश, आह कितना सुकून है।

0: के साधक।
1: ओ रे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की ओ।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। सेहत के कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
3: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
3: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने सुबह नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य, हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने के प्रयास किए जाते थे, जबकि आज भारत निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहा है। जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन 7 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। IMC 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाले इस बैठक में GST विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.5% हो गया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी। सरकार ने कहा है कि देश में प्याज की उपलब्धता बेहतर हुई है और इसकी कीमतों में भी कमी आ रही है। उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार इस साल खरीफ प्याज की खेती बढ़ी है, फसल की स्थिति अच्छी है और मंडियों में प्याज की आवक भी बढ़ रही है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान से नई खरीफ प्याज की आवक शुरू हो गई है। आने वाले हफ्तों में इन राज्यों से आवक और बढ़ने की उम्मीद है। इससे त्योहारी मौसम में बाजार में प्याज की उपलब्धता बेहतर होगी। भारत ने पिछले 1-2 दिनों में काला सागर क्षेत्र में हुए वाणिज्यिक जहाजों पर सिलसिलेवार हमलों की निंदा की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए गंभीर खतरा है और नाविकों की जान जोखिम में डालते हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने लगातार लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की वकालत की है और शांति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत की है। कनाडा के प्रधानमंत्री के वरिष्ठ राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सलाहकार डेविड मॉरिसन का भारत दौरा आज समाप्त हो गया। डेविड मॉरिसन 3 दिन के भारत दौरे पर थे। वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के निमंत्रण पर भारत आए थे। विदेश मंत्रालय के अनुसार नई दिल्ली में हुई बैठक दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर पर चल रही द्विपक्षीय सुरक्षा वार्ता के अंतर्गत आयोजित की गई। एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक